0: Your creation and your resurrection will not be but as that of a single soul.
1: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410। साउथहॉल ट्रेवल, at all protected.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful.
2: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.
0: Blessed is he who sent down the criterion upon his servant, that he may be to the worlds a warner.

0: तारिक हलाल ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए ऑन tarikhalal.com और घर बैठे ताजा मीठा हासिल कीजिए।
1: This is Laika Radio.

0: बॉस के ऊपर जाएगा भाई।
1: पवन जी, मैंने सुना है आप दोनों के रिलेशन अच्छे नहीं है।
2: आप सीधे सीधे आरोप लगा रही हो।
3: निकाल माइक।
4: बाई माई के पिया कितना सुंदर।
5: The brand new reality TV show Bhojpuri Pawal, Monday to Sunday at 10 PM on Colors TV.
6: Like a radio network. Proud hospitality partner.

0: and 90s. Leica Radio Punjabi. Leica Gold 2. Now available on the Leica Radio mobile app and Alexa.
1: दिल मांगता है दिल दिल दिल मांगता है दिल मांगता है दिलदार सोनिए तू आजा सोनिया

0: Tonight's Midnight Come. Join Surinderella this summer as she goes back into the Bollywoods. Surinderella, panto fun for all the family. Radio partner Leica Radio.
1: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल.
2: You mean Subtle Travel?
1: Yes, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर.
2: एक बार आजमाइए जरूर Subtle Travel.
1: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
2: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए.
3: Call Subtle Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0161 250 1250. That's 0161 250 1250.
4: सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच या शाम का डिनर, सब कुछ एक ही जगह. बल्कि नाश्ता अवेलेबल ऑल डे. तहजीब स्वीट्स, बेकर्स एंड रेस्टोरेंट्स में एंजॉय करिए हलवा पूरी, पाए, निहारी, मगज, पराठे और बिरयानी. साथ ही लजीज डिजर्ट्स, फालूदा, शेक्स, कड़क चाय, कॉफी और ठंडी लस्सी का मजा लें. ग्रैंड ओपनिंग ऑन जुलाई दी 11th. आज ही तशरीफ लाइए. 881 स्टॉकपोर्ट रोड, मैनचेस्टर, M19 3PG. तहजीब स्वीट्स, बेकर्स एंड रेस्टोरेंट, हर वक्त हर जायके के लिए.
5: Mom, have you bought some of those delicious noodles?
6: You mean Koka, the king of noodles? Koka means delicious. Variety of flavors available in Koka packet, Koka cup and Koka bowl noodles. Suitable for vegetarians and halal approved. The king of noodles, Koka noodles, packets, cups and bowls, now available everywhere in the UK.
7: Did you know you can advertise on this station, Leica Radio, Greater Manchester, plus our other offerings, Leica Radio.

पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

दो ट्रैक से फास्ट ट्रैक लाने में निकाल देता है, पर ढाई घंटे में मेरी किस्मत ऐसे स्लो ट्रैक से फास्ट ट्रैक पर आ जाएगी, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। सजा मजा बन जाएगी, ये भी कभी सोचा नहीं था। लास्ट लोकल क्या छुट्टी, साला किस्मत पटरी।

0: जी हाँ जी, जीवन की गाड़ी भरपूर मसरूफ तरीन वीकेंड गुजार के आई है।
1: कहते हैं ना,
0: जो कहते हैं क्या
1: होता है, अच्छे के लिए होता है,
0: जो भी कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। आज भी जो होगा बहुत अच्छा होने वाला है।
2: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store. Like a radio.
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
5: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
4: High appreciation.
5: In Dubai.
6: Herald. New world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries, and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
7: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
8: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs.
9: Borderless World presents Atif Aslam live in concert.
8: Atif Aslam brings his unforgettable sound
9: on Friday, 11 September at the AO Arena, Manchester. Tickets are now available on Ticketmaster.
8: Zenby Productions, supported by Rianne's Music.
9: Official radio partner, Laika Radio, Greater Manchester.
10: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना।
11: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जैमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
10: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जैमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
2: Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app.
12: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

0: 会会会。Like a radio. वो से लग रहा था जैसे इंसान छत पे चढ़ा हो, ऊपर और कबूतरबाजी कर रहा हो। हाय हाय हाय, बादल ही बादल हो और अचानक बारिश हो गई हो। मंडे मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं अपनी बज़्म की बज़्म ताबिश ऑफिशियल मिड मॉर्निंग शो रब्बे जलील के उस बाबरकत नाम से जो मेरे और आपके दिलों के भेद खूब जानता है, मुझे भी खूब जानता है मैं कैसा हूँ और आपको तो जानते ही होगा। इसमें शक की कौन सी बात है ना मुझे। 17 अगस्त, जी हाँ जी, अगस्त का महीना, मेरा महीना, मेरे मुल्क का महीना, तमाम पाकिस्तानियों का महीना, तमाम हिंदुस्तानियों का महीना। वीकेंड पे बहुत से सितारे, फिल्म स्टार, पाकिस्तानी इंडियन की पैदाइश थी, लेकिन मैं नहीं था। बहरहाल मैं नहीं था तो कोई बात नहीं। आज हमारी डायरी के पन्ने पे जिसका नाम लिखा है, अपने नाम की तरह खूबसूरत थी और हैं, आज भी हैं, इस पे तो होगी बाद में बात। फिलहाल आप सबको वेलकम, खुशामदीद। घर पे हैं, काम पे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, मेरा साथ निभाएंगे पूरे 1 बजे तक। कैसा वीकेंड आपका गुजरा, थोड़ी सी जरा रोशनी डालिएगा और वरना उसके बाद फिर मैं रोशनी डालूंगा। बमाए एक दद रिडल के साथ, आज की पहली के साथ। हाँ तो साथ निभाएंगे आप मुझे 07703403020 के नंबर पर, अपने होने का एहसास दिलाएंगे, मुझे खत लिखेंगे, शायरी भेजेंगे, लतीफे भेजेंगे और रिडल का जवाब देंगे। और आतिफ असलम का कंपटीशन अचानक मंसूख हो गया, मेरे शो से उड़ गया, लेकिन मैं कल करूंगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन मेरे बाद जो भी प्रेजेंटर्स आएंगे, वो रोजाना हर प्रेजेंटर्स जो है, आतिफ असलम 11 सितंबर को आ रहे हैं एओ अरीना मैनचेस्टर में, उसके लिए कंपटीशन करेगा लाइक रेडियो से हर प्रेजेंटर।
1: करेंसी अपडेट्स स्पॉन्सर्ड बाय लेमफाई मोबाइल ऐप, सेंड मनी टू इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश स्विफ्टली फ्रॉम योर फोन।
0: US डॉलर आज का रेट 1.35, 1.35 इंडियन रुपीज में 129.28, पाकिस्तानी रुपीज में 376.84, बांग्लादेशी टका 167.05, श्रीलंकन रुपीज 450.26 और अफगानी रुपीज 88.55।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. You're listening to LIKA Radio Greater Manchester on 963 AM and 1377 AM. Previously known as Asian Sound Radio. LIKA Radio. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: हाँ जी, Southall वालों का पैगाम, दुबई जाने के लिए बेशुमार ऑफर्स और बड़ी अच्छी डील्स आपको दे रहे हैं, लेकिन टर्म्स कंडीशंस अप्लाई होंगी, एटोल से प्रोटेक्टेड है और नंबर इनका है 0208-574-8410, इन्हें अभी कॉल कर लें।
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. This is Leica Radio News Update.
0: Mid morning show में अब उर्दू की खास खास हेडलाइंस का वक्त। बेल्जियम में जंगलात में लगी आग जर्मनी की सरहद तक बढ़ने लगी। हमास का गजा जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले पर इत्तेफाक। ईरान का अमरीकी फौजियों को पकड़ने या मारने पर $30,000 इनाम का ऐलान। कनाडा में हजारों अफराद की पाकिस्तानी फेस्टिवल में शिरकत, नया रिकॉर्ड कायम किया। इस्माइल बकाई ने कहा कि ईरान की साबित कदमी ने दुश्मनों के अंदाजों और मंसूबाबंदी को नाकाम बना दिया है। अमेरिका से मुआहदे को ताकत के साथ आगे बढ़ाया, दुश्मनों के साथ के सामने सरकलम नहीं किया, सर तस्लीम खम नहीं किया, ईरानी सदर ने कहा। भारत में आसेब का खौफ, 600 तलबा ने बोर्डिंग स्कूल छोड़ दिया। साबिक ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामिनाई के चेहलम की तैयारियां। भारत में एक मंदिर में भगदड़ मचने से 7 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। आयरलैंड में होलनाक ट्रैफिक हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए। तो ये तो थी उर्दू की चंद खास खास हेडलाइंस। मजीद अपडेट जानने के लिए सुनते रहिए लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर।
1: द लेटेस्ट गोल्ड रेट इज ब्रॉट टू यू बाय हार्टी हैंक्स, योर डिजिटल ग्रोथ पार्टनर। दिस इज Leica Radio।
0: और अब सोने का भाव हमारे यहाँ यूके में आज 1 ग्राम गोल्ड की कीमत हो गई है 103 pounds 97 pence यानी 103 pounds 97 pence, जबकि पाकिस्तानी रुपीज में 24 कैरेट 1 ग्राम गोल्ड का भाव आज हो गया 38,900 rupees 38,900 rupees।
1: Gold Rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com. Leica Radio. ये है Leica Radio. Leica
2: Countless personalities. A whole universe of entertainment. Sunil Grover, live UK Tour 2026.
3: 29th October, Ovo Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
2: From Gutti to Dr. Mashur Gulati. From Rinku Bhabhi to brand new surprises. Experience Sunil Grover live on stage in the UK.
3: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
2: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
3: For more information, contact 07585 801801. Official radio partner, Leica Radio Network.
4: सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच या शाम का डिनर, सब कुछ एक ही जगह। बल्कि नाश्ता अवेलेबल ऑल डे। तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट्स में एंजॉय करिए हलवा पूरी, पाए, निहारी, मगज, पराठे और बिरयानी, साथ ही लजीज डिजर्ट्स, फालूदा, शेक्स, कड़क चाय, कॉफी और ठंडी लस्सी का मजा लें। ग्रैंड ओपनिंग ऑन जुलाई 11th। आज ही तशरीफ लाइए, 881 स्टॉकपोर्ट रोड, मैनचेस्टर, M19 3PG। तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट, हर वक्त हर जायके के लिए।
5: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान, देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410। साउथ हॉल ट्रेवल, at all protected.
6: Celebrate 30 years of East is East as Ayub Khan Din's iconic story returns to its northern roots at the Octagon Theatre in Bolton.
7: Don't miss Bhaskar Patel leading a stellar cast in this hilarious and heartfelt comedy about the Khan family. Set in Salford back in 1971, follow husband George and his wife Ella and their 7 children as they navigate life between two cultures.
6: See East is East from Friday 4th September to Saturday 3rd of October. Book now at octagonbolton.co.uk.
8: Caratino Better Ghee, the healthier, low price, cholesterol free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
1: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
9: अपने कारोबार को अक्रॉस ग्रेटर मैनचेस्टर पहुंचाना चाहते हैं तो इसे लाइक रेडियो मैनचेस्टर पर जो साउथ एशियन कम्युनिटी के सीने में दिल बन के धड़कता है एडवर्टाइज करके सैकड़ों लिसनर्स तक रोजाना पहुंचाइए। लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर, ईमेल sales@leicamedia.co.uk और कॉल नंबर इज 0161250822, दैट इज 0161250822। लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर, आपकी कम्युनिटी, आपका स्टेशन।
1: 90s throwback plays now.
10: Leica Radio.

0: जी हाँ जी, चांदनी कहने तो नहीं आई, लेकिन हाँ कुछ टूटे फूटे बादल हैं जो कहने आए हैं कि मुझे प्यार कर। मंडे मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, इब्न ताबिश फुल मूड में, फुल एनर्जी के साथ, भरपूर तवानाई के साथ, पूरे 3 घंटे आपको एंटरटेन करने की खातिर।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: आज ये SBI वालों का पैगाम, इंडिया अपने प्यारों को रकम पहुंचाने के लिए इनकी किसी ब्रांच में आप जा सकते हैं, वहां से रकम पहुंचा सकते हैं ऑनलाइन या फिर इनकी मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लें, योनो SBI मोबाइल ऐप UK। और आज का रेट दे रहे हैं ये इंडियन रुपीज ब्रिटिश पाउंड के बदले में 128.08।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. WhatsApp Leica Radio Greater Manchester now on 07703 40 30 20. Leica Radio.
0: जी हाँ जी, 07703 40 30 20। कई लोग, कई मेरे चहीते और लाडले लिस्टर इंतजार कर रहे थे कि ताबिश भाई आपने कहा था कि आप मंडे को कंपटीशन करेंगे आतिफ असलम का, और आपने आते ही दिल तोड़ दिया। अरे नहीं नहीं नहीं, पूरे हफ्ते चलेगा कंपटीशन भाई, फिकर नॉट, चिंता की कोई जरूरत नहीं है। कल से करूंगा, कोई बात नहीं, एक आध तो गैप आता रहेगा ना, ऐसा तो चलेगा, एक दिन गैप। लेकिन बहरहाल इसी तरह से मेरे बाद के प्रेजेंटर्स जो शाम तक आएंगे वो भी आपके साथ कंपटीशन करेंगे। आपने भरपूर तरीके से हिस्सा लेना है आतिफ असलम के इस कॉन्सर्ट को, आपने अपनी आंखों के सामने आतिफ असलम को गाते हुए देखना है ना। हमारी डायरी के पन्ने पे एक बड़ा ही खूबसूरत नाम लिखा है साहब, उनके गाने हम तलाश कर रहे हैं। अदाकारा शबनम, पाकिस्तानी एक्ट्रेस अदाकारा शबनम, जिनका असल नाम था झरना। आय आय आय, झरना बैठे तो देखा होगा आपने, सुना होगा, झरने को उर्दू में भी एक और नाम भी है उसका, मेरा ख्याल शायद फारसी में कहते हैं आबशार, है ना। अच्छा जी, आज का रिडल आपसे पूछते हैं, रिडल तो चलता रहेगा ना भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग रिडल है, कराची से आया है। कहते हैं साहब कि अंधेरे में रोशनी देना मेरा काम, अंधेरे में रोशनी देना मेरा काम, और दुनिया ने दिया पागल मुझे नाम। अंधेरे में रोशनी देना मेरा काम, दुनिया ने दिया पागल मुझे नाम, अब बूझो तो जाने बोलो क्या है मेरा नाम। ठीक है जी, घर पे हैं, काम पे, ड्राइव कर रहे हैं, बहुत सारी बातें आपके साथ करनी है, रिडल के साथ साथ इंडियन पाकिस्तानी क्लासिक सॉन्ग चलेंगे, बहुत जबरदस्त
1: जबरदस्त। ऑन लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर।

0: मैंने नहीं सुना है। Once again,
1: like a radio.
0: Please, once again, मैंने नहीं सुना है। कजूरी जी ने कहा ताबिज जरा रिडल दोबारा बताना, फिर से पूछना, मैंने नहीं सुना। हाँ जी, आज का रिडल। इससे पहले जो सॉन्ग 90s का हमने आपके लिए प्ले किया था, दिल तो पागल है से प्यार कर, उसी तकरार में हम लेके चले गए आपको 80s के जमाने में। फिल्म का नाम था महाचोर। लता मंगेशकर और किशोर कुमार का ये गाना हम नाम करेंगे। कजूरी जी, आपके आज का पहला क्लासिक सॉन्ग। गुलाम अली भाई हमारे साथ हैं आप बोल्टन में, ब्लैकबर्न में, माफी चाहता हूँ, और वहीं पे हमारे साथ निभाती हैं शमी बानो बिगानी, या क्रिंटन में हमारे साथ हैं पहलवान, पहलवानों के पहलवान सज्जाद पहलवान, मोहम्मद अशफाक भाई, शुमैल नवीद, फरजाना नसीब हमारे साथ हैं जी वारिंगटन में। और इतनी जल्दी आपने हमें जवाब दे दिया, आपने जवाब दिया मोमबत्ती। अरे भाई सुन तो ले, मैंने पूछा क्या है, मैंने पूछा है अंधेरे में रोशनी देना मेरा काम, दुनिया ने दिया मुझे, दुनिया ने दिया पागल मुझे नाम। हाँ मतलब समझ लें आपको, तो आगे पीछे कर लें वर्ड को, तो बूझो तो क्या है मेरा नाम। ठीक है, बहुत मुश्किल आज की पहेली है, बता रहा हूँ आपको, बहुत फनी है और बहुत मजा आने वाला है। आज की पहेली आप सबको पागल कर देगी, पागल। अबरार वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए। मलेका इजिप्ट में है हमारे साथ, नेक्स्ट वीक आ जाएंगी वापस यूके, थैंक यू। उमर वालेकुम अस्सलाम, उमर ने हमें सलाम किया, इम्तियाज आपने सलाम किया, शिराज आ गए हैं जी उमरा करके माशाल्लाह अपनी पूरी फैमिली के साथ। शिराज हमारे पूरे पांचों दिन के रोजाना के रेगुलर लिसनर हैं, बहुत बहुत मुबारकबाद तुमको शहजाद, अल्लाह पाक तुम्हारी दुआएं कबूल करे, आमीन।
2: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड, और उत्सव भारत है स्टार भारत।
3: After the smash hit run in 2025, Surinderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bhangra and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic panto tale on its head and give it an exciting dizzy twist. Touring to the Palace Theatre, Manchester, Friday the 4th of September to Saturday the 5th of September. Click RifkoTheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight. Come join Surinderella this summer as she goes back into the Bollywoods. Surinderella, panto fun for all the family.
4: Radio partner, Leica Radio.
5: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
6: Hold on, miss. 2055? We'll be grown-ups by then.
7: We're not having that, are we?
6: No. Oi, hear that? If water and cans...
8: And fix those drips and drops.
9: And take shorter showers, yeah?
10: Because when we work together,
11: it all adds up.
12: So come on, you lot. Search Let's Save Water.
13: Location, location, location.
14: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
15: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
14: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
15: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
14: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
15: And the best part, townhouses and villas, Greens, start from just £711,000.
14: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
15: High appreciation.
14: In Dubai.
16: South of travel, 7 days a week. South of travel, 24 hours a day. We're at our peak.
17: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
18: Southall Travel. Call 0208-574-8410. 0208-574-8410.
19: Southall Travel can take you there.
20: Southall Travel. At your

0: रोज कयामत आ जाए। फिल्म का नाम था साहब उफ ये बीवियां। याद है आपको इस फिल्म में अदाकार शाहिद की तीन तीन बीवियां थी साहब। ओह माय गॉड। लाइक अ रेडियो मेरे होते हुए तेरे होठों पर गा रही थी नाहिद अख्तर अदाकारा शबनम। जी हाँ जी, रॉबिन घोष की शबनम, पाकिस्तान की सुपरस्टार, पाकिस्तानी वो सुपरस्टार जिसने 30 बरस पाकिस्तान की इंडस्ट्री पे राज किया और आज भी उनके चाहने वालों में कोई कमी नहीं है। मेरी उम्र के नौजवानों और नौजवानियों, अदाकारा शबनम का कोई गीत आपको याद आ जाए, आपके जमाने का कोई गीत आपको उनका पसंद हो तो मुझे जरूर लिख के भेजिएगा। गाने के बोल और फिल्म का नाम लिख देंगी तो मेरे लिए, गाने के लिए मुझे फिर गाना निकालने में आसानी पैदा होगी। राजा अतीक भाई वालेकुम सलाम, जीते रहिए, कैसे हैं आप? शिराज भाई हमारे साथ हैं जी, ओल्डहम में, ओल्डहम ही में हमारे साथ होंगी बिल्कीस अंजुम जमान। मोहम्मद अशफाक भाई हमारे साथ होंगे आधरटन में। उमर फारूक, शफकत अली भाई, मजर भाई लीड्स में। मजर भाई आज आपको बहुत मजा आने वाला है, आपकी पसंद के गीत होंगे आज पाकिस्तानी। नौशाद अली भाई हमारे साथ हैं बर्ले में, डेल्सन में हमारे साथ निभाएंगे वहीद इकबाल भाई हमारे काका, और खालिद महमूद भाई, जमशेद चौधरी भाई होंगे हमारे साथ। जमशेद भाई कहाँ होते हैं? स्टॉकपोर्ट में, ब्लैकपूल में। नवाज भाई, आसिया हमारे साथ होंगी जी, आसिया होंगी रॉजडेल में, गजाला जबी और रुखसाना अफजल। मुदस्सर सज्जाद हमारे साथ होंगे, अरशद मुगल भाई, सायरा हमारे साथ होंगी, लतीफ भाई बॉली रेंज में, और फरजाना नसीब। आज के रिडल का जवाब फरजाना जी कैसे देंगी यार, बहुत मजा आने वाला है।
1: This is Leica Radio, Greater Manchester, formerly known as Asian Sound Radio.

मुश्किल और क्लासिकल सॉन्ग, यकीन कीजिए सिर्फ श्रेया घोषाल ही गा सकती थी और उनका साथ निभाया था MG श्री कुमार ने।

0: रेडियो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से के दो बैक टू बैक गाने और दोनों गानों में एक लफ्ज मुश्तरक था, ढोलना, और फिल्म का नाम था भूल भुलैया। क्या आप लोग जानते हैं, खासतौर पे पुराने लोग जरूर जानते होंगे, या आपने अपने बड़ों से सुना होगा कि भारत में, इंडिया में एक ऐसा मुकाम, एक ऐसा इलाका, एक ऐसी जगह है जिसका नाम है भूल भुलैया। पता है आपको, पहले जमाने के बादशाह, पहले जमाने के हुक्मरान जब किसी मुजरिम को सजा दिया करते थे तो उसे भूल भुलैया छोड़ाते थे। भूल भुलैया में ये होता है कि आप जाके वहां जिसको छोड़ आए, फिर उसे वापस आने का रास्ता नहीं मिलता। हाँ, और बिलाखिर वो वहीं का होके रह जाता है। ये होती थी सजा, जालिम हुक्मरान, और कैसी जालिम जालिम सजाएं। एक बार फिर से खुशामदीद। 17 अगस्त आज है हमारी डायरी के पन्ने पे। पाकिस्तानी एक्ट्रेस शबनम की आज हम बर्थडे मना रहे हैं और उनके गाए हुए गीतों को हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे अपनी पसंद और आपकी पसंद के साथ साथ। और आज का रिडल, अंधेरे में रोशनी देना मेरा काम, दुनिया ने दिया पागल मुझे नाम, बूझो तो क्या है मेरा नाम।
1: ये है लाइका रेडियो,
2: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
4: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
3: High appreciation.
4: In Dubai.
5: From cuddles to intensive care. From school runs to sirens. For babies, young children and teens, illnesses like measles, meningitis and pneumonia can cause serious life-threatening complications and even be deadly. Making sure that your child is vaccinated is a safe and effective way to keep them happy and healthy. Keep them protected with the NHS vaccines offered to children. Search NHS GM Child Vax or contact your GP practice.
6: सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच या शाम का डिनर, सब कुछ एक ही जगह, बल्कि नाश्ता अवेलेबल ऑल डे। तहजीब स्वीट्स, बेकर्स एंड रेस्टोरेंट्स में एंजॉय करिए हलवा पूरी, पाए, निहारी, मगज, पराठे और बिरयानी, साथ ही लजीज डिजर्ट्स, फालूदा, शेक्स, कड़क चाय, कॉफी और ठंडी लस्सी का मजा लें। ग्रैंड ओपनिंग ऑन जुलाई 11th, आज ही तशरीफ लाइए। 881 स्टॉकपोर्ट रोड, मैनचेस्टर, M19 3PG। तहजीब स्वीट्स, बेकर्स एंड रेस्टोरेंट, हर वक्त हर जायके के लिए।
7: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
8: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
7: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
8: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
7: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
8: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
1: Asian Achievers Awards, Friday, September 18th at London Hilton Park Lane. Exclusive radio partner, Leica Radio, Greater London.
9: जब सामने तुम आ जाते हो, क्या जानिए क्या?
10: आपका नया स्टेशन Leica Radio Ghazals बहुत जल्द आ रहा है।
1: A Leica Radio Classic plays now.

0: का रेडियो।
1: भाई बात आविश, कहाँ से ढूंढ के लाया यार ये सॉन्ग। 1966 का क्लासिक सॉन्ग, फिल्म का नाम था बहारें फिर भी आएंगी। आशा जी और रफी साहब का मधुर गीत, नाम करेंगे शमीम बानो बेगानी आपके। आप हमें सुन रही हैं, आपका बहुत शुक्रिया। गुलाम अली भाई आपके भी। और TNA ग्रुप, जी हाँ जी, मैनचेस्टर में वो एक फैक्ट्री में जो ग्रुप है, बहुत सारे हमारे बहन भाई वहाँ सुनते हैं लगातार मुस्तकिल। आज भी हमें मैसेज किया बिल्कीज बहन ने, वहाँ पे होते हैं सरदार साहब, करामत साहब और कितने सारे नाम थे, वो जरा ऊपर चले गए। मैं दोबारा फिर जब आऊंगा ऑन एयर तो उनके नाम भी प्रोग्राम में शामिल करूंगा। मलिका ने हमसे पूछा था और ताबीन ने पूछा था कैसा गुजरा वीकेंड। हाँ यार, हर हफ्ते पूछते हैं आप। चले आज को बता ही देता हूँ आपको। भाई मैंने थोड़ा सा घूमा फिरा, कुछ बाहर आवारागर्दी की, कुछ बाजार का खाना खाया, चटपटे खाने खाए बाजार के, और फिर अपना पेट खराब किया और फिर दो फिल्में देखी। हाँ, एक इंग्लिश एक उर्दू, यानी हिंदी। इंग्लिश फिल्म थी, उसका नाम था जनाब द लॉस्ट हाउस। हाँ, लॉस्ट हाउस, या क्या मीनिंग निकलते हैं आप ही को पता होगा। बड़ी अजीब फिल्म थी, बहुत दिलचस्प फिल्म थी। अगर आपको मौका मिले तो देखिएगा अंग्रेजी फिल्में। और हिंदी फिल्म हमने देखी जनाब दिलजीत दोसांझ की फिल्म, जो बड़ी कंट्रोवर्सी का शिकार हुई। उस फिल्म का नाम था मैं वापस आऊंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी, क्या स्टोरी लेकर आए, जबरदस्त भाई, कमाल कर दिया। आपको वक्त मिले तो जरूर देखिएगा। आसिम देर से क्यों आए, रिडल का जवाब दे रही हैं। गजाला हमारी बहन बहुत सारे जवाब दे रही हैं, लेकिन एक भी जवाब आपका दुरुस्त नहीं है। अंधेरे में रोशनी देना मेरा काम, दुनिया ने दिया पागल मुझे नाम, बूझो तो क्या है मेरा नाम।
0: This is Leica Radio, Greater Manchester, formerly known as Asian Sound Radio. Leica Radio. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: US dollar aaj hamare yahan 1.35 1.35, jabki Indian rupees mein aaj ka rate hai 129.28, पाकिस्तानी रुपीज में 376.84, बांग्लादेशी टका 167.05, श्रीलंकन रुपीज 450.26 और अफगानी रुपीज 88.55।
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Leica Radio.
1: दुनिया में खूबसूरती की कमी नहीं, लेकिन कोई दुनिया में खूबसूरती की कमी नहीं, लेकिन कोई चेहरा जरूर होता है जो आंखों को पावन कर देता है। एजाज की शायरी भेजी हुई हमारे प्रोग्राम में, बहुत सारा हिस्सा डालते हैं एजाज, अच्छा लगता है। आसिम एजाज, बहुत खूबसूरत हो जाती है वो जिंदगी, बहुत खूबसूरत हो जाती है वो जिंदगी जब कोई आपसे ज्यादा आपका ख्याल रखने वाला हो।
0: मेकिंग समर फील बेटर ऑन द लाइका रेडियो नेटवर्क।
1: फरीद भाई ने हमें शबनम के बहुत सारे गाने लिख के भेजे हैं। डॉक्टर अल्ताफ अलवी, आपने हमें ज्वाइन किया है, आपने सबको सलाम कहा है। गुड मॉर्निंग एंड वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब।

0: जी हाँ, फिल्म का नाम था आईना, अदाकारा शब्दम, इम्तियाज भाई ने कहा ताबिश भाई माय सॉन्ग। हाँ, अगर आपका सॉन्ग है तो आपका नाम इम्तियाज भाई।
1: This gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
0: सोने का भाव, एक बार फिर से आपको बता दें, हमारे यहाँ यूके में आज 1 ग्राम गोल्ड की कीमत है 103 pounds 97 pence, यानी 103 pounds 97 pennies, पाकिस्तानी रुपीज में 24 कैरेट। 1 ग्राम गोल्ड की आज कीमत हो गई 38,900 rupees, 38,900 rupees.
1: Gold rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency. Helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.
2: Leica Radio. ये है
3: Leica Radio.
1: Ibn Tabish on Leica Radio, Greater Manchester.
2: Leica Radio.
1: Leica Extra Podcast Update.
0: राइट जनाब, लाइक रेडियो की पॉडकास्ट अपडेट। आपको बता दें कि रवि शर्मा हमारे बहुत सीनियर प्रेजेंटर हैं और इस हफ्ते इस पॉडकास्ट पे अब वो बात कर रहे हैं सोने पे। जी हाँ जी, सोना, इंसान की जिंदगी में सोना और सोने की इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इससे मतलब बात कर रहे हैं, इस मौजू पे बात हो रही है। लिहाजा आपने इस एपिसोड को जरूर देखना है। इज गोल्ड रियली द बेस्ट इन्वेस्टमेंट?
1: लाइक एक्स्ट्रा इज हियर।
3: Leica Radio.
4: जिंदगी बर्बाद हो गई है।
5: Get ready UK. Snell Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi and more surprises on the night.
4: अगर आज लिखेगी तो कमलेश की लुगाई, 2 साल बाद लिखेगी तो बिट्टू की मम्मी।
6: Expect music, madness, family entertainment and non-stop laughter. Snell Grover Live UK Tour 2026 happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
5: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
6: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
5: For more information, contact 07585-801-801. Official radio partner, Leica Radio Network.
4: मैंने ना फंक्शन रखा हुआ है।
7: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल।
8: यू मीन सफल ट्रेवल?
7: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर।
8: एक बार आजमाइए जरूर सफल ट्रेवल।
7: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
8: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए।
9: कॉल सफल ट्रेवल 24 hours a day 7 days a week ऑन 0161 250 1250. दैट्स 0161 250.
10: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
11: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
10: live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
11: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
10: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
11: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
12: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055, we could be short by 5 billion litres a day.
13: Hold on, miss. 2055, we'll be grown-ups by then.
14: We're not having that, are we?
13: No. Oi, hear that? If water and cans.
15: And fix those drips and drops.
16: And take shorter showers, yeah?
17: Because when we work together, it all adds up.
18: So come on, you lot. Search Let's Save Water.
1: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. 7 stations. 1 podcast. 1 mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0161 250 8222 or sales at leicamedia.co.uk. Ibn Tabish on the Mid-Morning Show.
3: Leica Radio.

0: आशा जी और एसपी बाला सुब्रमण्यम। फिल्म का नाम था गर्दिश। कितना रोमांटिक सॉन्ग था ना। नाम करेंगे हम मलिका जी के। मलिका इजिप्ट में हमें सुन रही हैं। और
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: SBI वालों का पैगाम, इंडिया अपने प्यारों को रकम पहुंचाएं ऑनलाइन या इनके किसी ब्रांच में जाएं या इनकी मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लें, योनो SBI मोबाइल ऐप UK। आज का रेट 128.08 रुपए।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Leica Radio.
2: Leica Radio.
1: Greater Manchester. Leica Radio.
0: Leica Radio, Greater Manchester. Tariq Bhai ne join kiya hai. Tariq Bhai, Nahid Akhtar ka wo geet aapko bahut acha laga. जी हाँ जी, आज अदाकारा शबनम की हम बर्थडे मना रहे हैं, तो लिहाजा आप भी हमें बता सकते हैं अपनी कोई फरमाइश। आपने जो गीत मुझे बताया है, अगर वो मुझे मिल गया तो यकीनन मैं आपको लगा के अच्छा लगा के क्या होता है, आपके लिए प्ले करूंगा यकीनन। वरना मेरे पास यहाँ क्यू में बहुत सारे आज अदाकारा शबनम पे गाने जो है वो मैंने लाइन अप किए हुए हैं, एक से बढ़ के एक होगा और आपको उस दौर की याद दिलाएगा जब आप सिर्फ और सिर्फ रेडियो ही सुना करते थे। पाकिस्तान में एक एंटरटेनमेंट का बेहतरीन जरिया एक रेडियो ही हुआ करता था, जो आज भी है। देख लें आजकल के सोशल मीडिया के जमाने में, इस टेक्निकल जमाने में भी आप कितनी दिलचस्पी के साथ रेडियो सुनते हैं ना, क्योंकि रेडियो वो चीज है जिसे आप, रेडियो वो जरिया है कि जिसे आप घर पे, काम पे, ड्राइव के दौरान कहीं भी सुन सकते हैं। अच्छा जी, रिडल के जवाब। इतनी परेशान अर्शद मुगल भाई। और अतीका जी, आपका पैगाम मिला, बहुत शुक्रिया नवाजी साहब की, हमारे साथ आप साथ निभा रही हैं। शुमैला कहती हैं, कोई भी एक अच्छा सा गीत मेरे और मेरे नवीद के नाम। भाई सारे गीत तुम्हारे नाम होंगे। सायरा हमें सुन रही हैं, सायरा नासिर लंदन में। रहीम भाई हमारे साथ होते हैं, राहिम बहुत शुक्रिया। अहमद जी गटली में। साइमा हमारे साथ हैं। और यहाँ कौन है भाई, बहुत सारे नाम है। नवाजिश, युगेश भाई लंदन में। और चंदा हमारे साथ है बरी में। बरी में हमारे साथ है लेला। काशिफ अब्बासी ब्लैकबर्न में। और खाली अब्बास और जाहिद अब्बास और खुशबू हमारे साथ हैं जी, कहाँ वाला, प्रेस्टन में।
1: The Pakistani Hit of the Hour is brought to you by the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.

0: है लाइका रेडियो, लाइका रेडियो। आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
1: After the smash hit run in 2025, Surinderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bhangra and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic Pando tale on its head and give it an exciting, dizzy twist. Touring to the Palace Theatre, Manchester.

0: Hacker Radio. जी हाँ जी, वो चिट्ठी जो आप मुझे रोज लिखते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे रोजाना खत लिखते हैं, उसी चिट्ठी का जिक्र कर रही थी मैडम नूरजहां। फिल्म का नाम था दोस्ती। कौन भला हीरो कौन थे उसके? एजाज दुर्रानी, याद है ना? अदाकारा शबनम जी। अयूबी भाई ने ज्वाइन किया है हमें, और अयूबी भाई ने सबको सलाम कहा है, खासतौर पे फरीद भाई को कराची में, और यहाँ आसिम को, और जमशेद चौधरी भाई आपको। आपने लिखा कि ये सॉन्ग अदाकारा शबनम का भी फेवरेट सॉन्ग था। जाहिद अब्बास भाई ने लिखा जबरदस्त। अच्छा जी, टीएनए की टीम की फरमाइश आ रही है, अब दारुल रख का गीत सुनना है आपने और एक और गाना सुनना है। मैं यहाँ पे जरा प्रोग्राम को अपनी तरतीब में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमजा, आपने सलाम किया है मुझे और सबको, वालेकुम सलाम हमजा, जीते रहो, थैंक यू वेरी मच। और ये कौन है जी, आपने लिखा है टेल राज हेलो फ्रॉम उस्मान। अच्छा जी, राज को आपने कहा हेलो, आपका नाम क्या है? नीता सोवनी। नीता, अपना नाम पूरा लिख देते तो मैं जरा अच्छी तरह, शायद मैं आपके नाम को प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, बहरहाल नीता मैंने पढ़ लिया है। लेला कहती हैं, बरी मैं मुझे बताओ आज की रिडल का जवाब बताओ। मैं क्यों बताऊं, रेडियो सुनो, रेडियो सुनते रहो, जागते रहो मनमोहन प्यारे। अंधेरे में रोशनी देना मेरा काम, दुनिया ने दिया पागल मुझे नाम, बूझो तो क्या है मेरा नाम। एक और बड़ा खूबसूरत क्लासिक सॉन्ग आपकी नजर।
1: Leica Radio, Greater Manchester. The sister station of Leica Radio and Leica Gold Radio in Greater London.

0: हाँ जी, दिल तो दिल है, दिल का क्या है, ये एक दिन फिसल जाएगा।
1: एक दिन ये
0: फिल्म का नाम था बदल, कब कौन और कहाँ,
1: हाँ कहिए चाहे,
0: अब हाँ कहो या ना कहो,
1: चाहे हाँ कहिए।
0: एक और गीत आपका मंतजिर है, और ये गीत कुमार सानू का है, जो कि लेके जाएगा आपको 12 बजे की खबरों की जाने। फिल्म का बड़ा अजीब नाम है साहब, फिल्म का नाम है इसकी टोपी उसके सर। आई विल कम बैक

0: डिग्री दिल्ली में 33 डिग्री, ढाका में 31 डिग्री, सब जगह बादल और अजीब सा मौसम है, जबकि न्यूयॉर्क में वेदर इस वक्त 21 डिग्री, बड़ा प्लेसेंट लेकिन फोग है थोड़ी सी वहाँ।
1: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0161-250-1250.
0: जी हाँ जी, गाना सुन रहे थे आप प्रोग्राम की दूसरे हिस्से का लास्ट ट्रैक, पागल तुझे मैं कर दूंगा। जी हाँ जी, आज का हमारा रिडल है, अंधेरे में रोशनी देना मेरा काम, दुनिया ने दिया पागल मुझे नाम, बूझो तो क्या है मेरा नाम। वैसे पागल को इंग्लिश में क्या कहते हैं पता है आपको? बैक टू बैक दो इंतहाई खूबसूरत गाने आप सबके नाम।
1: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, Greater Manchester, a new Asian sound for the northwest of England. 963 AM and 1377 AM. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world. Leica. Your mid-morning sounding good with Ibn Tabish.
2: Leica Radio.

0: tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
1: This is Leica Radio.
2: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
3: सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच या शाम का डिनर, सब कुछ एक ही जगह. बल्कि नाश्ता अवेलेबल ऑल डे. तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट्स में एंजॉय करिए हलवा पूरी, पाए, निहारी, मगज, पराठे और बिरयानी. साथ ही लजीज डिजर्ट्स, फालूदा शेक्स, कड़क चाय, कॉफी और ठंडी लस्सी का मजा लें. ग्रैंड ओपनिंग ऑन जुलाई 11th. आज ही तशरीफ लाइए. 881 स्टॉकपोर्ट रोड, मैनचेस्टर, M19 3PG. तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट, हर वक्त हर जायके के लिए.
4: Location, location, location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
5: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
4: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
4: high appreciation,
5: in Dubai.
6: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel, 24 hours a day, we're at our peak.
7: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, Gold Souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
6: Southall Travel.
7: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
6: Southall Travel can take you there.
8: Southall Travel, at all protected.
9: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
10: Mango season has arrived. You're also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
9: Jaimin Foods Mango Pulp, available now.
1: Your guzzle hit plays now on Leica Radio Greater Manchester.
11: वेलकम बैक. और अब इस हफ्ते की पहली गजल, और वो गजल जो अदाकारा शबनम पर फरमाई गई थी, आपको याद होगा ये गजल, इस फिल्म का नाम भी याद होगा.

0: कभी तो वो भी जलेंगे इसमें, कभी तो वो भी जलेंगे इसमें जो आग दिल में भड़क रही है। तस्लीम फाजली ने इस गजल को लिखा था और इस गजल को गाया था मलिका तरन्नुम नूरजहां ने, और फिल्म का नाम था मेरे हुजूर। अदाकारा शबनम पे फिल्म आई गई ये गजल। उन तमाम साथियों के नाम, गुलाम अली भाई आपके नाम, और तारिक भाई ब्लैकबन में आपके नाम तारिक ऐवान, अतीक जी आपके नाम, और अशरफ भाई आथटन में आपके नाम। कहते हैं कि पर्दा आंखों से हटाने में बहुत देर लगी, पर्दा आंखों से हटाने में बहुत देर लगी, हमें दुनिया नजर आने में बहुत देर लगी। बात यह कि जमाना जान गया था, जमाना जान गया था कि कितने वफादार हैं हम, अगर तुम्हें ये बात समझाने में, मगर तुम्हें ये बात समझाने में बहुत देर लगी। गुड आफ्टरनून, मंडे की दोपहर हो गई और मेरा और आपका लंच टाइम हो गया। बस मेरी मोहब्बत ही समझ न पाए तुम, बस मेरी मोहब्बत ही समझ न पाए तुम, बाकी मेरी हर गलती का बराबर हिसाब रखते हो। और आज का हमारा रिडल, अंधेरे में रोशनी देना मेरा काम, दुनिया ने दिया पागल मुझे नाम, बूझो तो क्या है मेरा नाम।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: हाँ जी, अब एक बार फिर से आपको प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में बता दें कि US डॉलर हमारे यहाँ आज है जी ब्रिटिश पाउंड के बदले में 1.35, 1.35 इंडियन रुपीज में 129.28, पाकिस्तानी रुपीज में 376.84, बांग्लादेशी टका 167.05, और श्रीलंकन रुपीज 450.26, जबकि अफगानी रुपीज 88.55 का।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. The new Asian sound for the Northwest. This is LIKA Radio, Greater Manchester. LIKA Radio. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: Southall वालों का पैगाम एक बार फिर से आपको बता दें कि दुबई जाने की तैयारी अगर आपने कर ली है तो ठीक है, और नहीं की तो दोबारा कर लीजिए, क्योंकि वहाँ के हालात अब बहुत बेहतर हो गए हैं। बहुत अच्छे ऑफर्स के साथ बहुत अच्छी नई नई डील्स आपके लिए निकाली हैं। 5-star होटल में क्याम, मगर टर्म्स कंडीशन अप्लाई होंगी, और एटोल प्रोटेक्टेड है। नंबर इनका है 0208574-8410.
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. The week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
0: Oh, janab, is hafte ke hamare artist of the week hain kaun bhala? Akshay Kumar. रोजाना हम आर्टिस्ट ऑफ द वीक का जब टाइम आएगा तो आपके लिए आपकी पसंद का एक रोज गाना लगाएंगे अक्षय कुमार का। इस हफ्ते के हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक हैं जनाब। मुझे बहुत अच्छा लगता है उदित नारायण का।

0: मेरी उल्फत मेरी वफा है, एक दिल रुबा है जो बेवफा है.
1: The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
0: हाँ जी, गोल्ड का रेट एक बार फिर से आपको बता दें, हमारे यहाँ यूके में आज 1 ग्राम गोल्ड की कीमत हो गई 103 पाउंड 97 पेंस, यानी 103 पाउंड 97 पेनिया. पाकिस्तानी रुपीस में 24 कैरेट 1 ग्राम गोल्ड की कीमत आज 38,900 रुपए तक पहुंच गई, यानी 38,900 रुपीज.
1: गोल्ड रेट इज ब्रॉट टू यू बाय हार्टी हैंक्स, यूके प्रीमियर डिजिटल मीडिया एजेंसी, हेल्पिंग कंपनीज एक्सपैंड देयर डिजिटल फुटप्रिंट. विजिट hartyhanks.com.
0: Right, जनाब, आपको बता देंगे प्रोग्राम के तीसरे हिस्से के आधे हिस्से में एक अदद लाइव रीड होती है जो आपको पढ़ के सुनाना होती है. कपिल शर्मा शो में डॉक्टर मशहूर गुलाटी का कौन नहीं जानता, साड़ियां पहन पहन के कितना लोगों को हंसाते हैं सुनील ग्रोवर. जी हाँ जी, सुनील ग्रोवर आ रहे हैं आपकी आंखों के सामने नेक्स्ट मंथ. यस, पहले लंदन में, फिर उसके बाद वो पहुंचेंगे जनाब

0: जी हाँ, पहले पहुंचेंगे OVO अरीना वेम्बली ऑन थर्सडे 29 अक्टूबर, उसके बाद लेस्टर पहुंचेंगे मिटोली अरीना में 31 अक्टूबर को। टिकट के लिए AXS पे जाके आप पहुंचे, ब्राइट इवन ब्राइट पे और टिकट मास्टर पे। आपको बता दें कि ये ग्रुप हमारा लाइक रेडियो का मीडिया पार्टनर है।
1: ये है लाइक

0: सी गुड़िया बड़ी भोरी भाली, फिल्म का नाम था दो साथी, अदाकार रहमान और अदाकारा शबनम की दो साथी। कैसे लगे ये गीत अदाकारा शबनम का आपको?
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK brand.
0: हाँ जी, SBI वालों का पैगाम है, इंडिया अपने प्यारों को रकम पहुंचाने के लिए आज जो ये रेट दे रहे हैं वो रेट है 128.08 रुपए।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. We are Leica Radio.
2: Leica Radio.
1: Greater Manchester.
3: Yeah, Leica Radio.
4: Leica Radio.
0: अब क्लासिक पे क्लासिक।

0: से
1: अजनबी बन जाएं हम दोनों। महेंद्र कपूर का लाजवाल गीत, फिल्म का नाम गुमराह। इस गीत को हम नाम करेंगे कजोरी जी की तरफ से। रोबिन भाई आपको
2: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
3: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
4: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए। दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410। साउथ हॉल ट्रेवल At all protected.
5: Location, location, location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location.
5: High appreciation
6: in Dubai.
7: Up next, Ravina Khan with the magazine show, Leica Radio, Greater Manchester. Punjabi Hit of the Hour with Tabish.

0: बट जनाब अबरारुल हक का पंजाबी सॉन्ग लगाने का कारण ये था कि बड़ी पुरजोर फरमाइश थी लास्ट जुमे से हमें भेजी थी हमारी यास्मीन है जो TNA की टीम है जो पूरी टीम हमें सुन रही है उनकी पुरजोर फरमाइश थी। हमने सोचा चलो भाई जाते जाते अदाकारा शबनम की गीते लगाते जाओगे ताबिश किसी की फरमाइश भी पूरी कर दो, तो लगे हाथ हमने ये यास्मीन आपके लिए पेश की। उम्मीद करते हैं आपकी सारी टीम ने आज भी हमें रोज की तरह सुना होगा और रोजाना सुनेंगे आप, कल भी आप साथ निभाएंगे हमारा। अच्छा जी आज की रिडल और उसका जवाब आपको बता दें जल्दी से और फिर ताबिश यहाँ से जाने की करेगा, पालक गोश्त खा रहे हैं गुलाम अली भाई। हाय हाय। और अंधेरे में रोशनी देना मेरा काम, दुनिया ने दिया पागल मुझे नाम, बूझो तो क्या है मेरा नाम। ये जवाब यकीन करें फरीद भाई ने हमसे कहा था कि अगर गूगल पे जाके भी लिखेंगे तो इसका जवाब नहीं आएगा, लेकिन हाँ कुछ पुराने सियाने बुद्धिमान लोग जो होते हैं जो बड़ा ज्ञान रखते हैं समझदार लोग जिनमें खुद हमारे क्या नाम है इनका फरीद भाई हैं, अयूबी भाई हैं और सैयद बुखारी साहब हैं मैनचेस्टर में, बरी में लेला आप हैं और राहेला जी आप हैं, कमाल कर दिया आप लोगों ने पहचान लिया भाई। आपको बताएं कि ये जो लालटेन होती है ना, जी हाँ लालटेन वैसे भी अंग्रेजों ने ईजाद की थी और लालटेन को उर्दू में क्या कहते हैं ये भी कभी पूछूंगा आपसे। लालटेन के अंदर जो वो दिया जलाने के लिए जो उसका अपना एक वो होता है, सोचें जरा जहां उसे लगाते हैं एक धागे से उसे बांधा जाता है, सफेद से रंग की जाली होती है, उसे मेंटल कहते हैं। मेंटल मैंने कहा था ना कि पागल को उर्दू में क्या कहते हैं। ये था आज का रिडल और अब जाते जाते दो गाने बैक टू बैक शबनम के।
1: Ibn et Tabish, rolling out your favorite hits across the northwest. This is Leica Radio, Greater Manchester.

0: The Magazine Show with Robina Khan. Leica Radio.
1: आज हाँ, welcome to the magazine show. रुबीना खान के साथ और अभी आपको दो back to back songs हमने सुनवाए हैं. दोनों की main theme यही सी, कुछ ना कहो, बिल्कुल कुछ ना कहो. So पहले गीत में आवाज थी अभिजीत एंड सुनिधि चौहान की, और अभी आप सुन रहे थे टाइटल ट्रैक ऑफ कुछ ना कहो, और आवाजें थी चान एंड साधना सरगम की आवाजें थी. So आज आप ये समझिए कि ये एक रेफरेंस सॉन्ग्स थे, कि नॉर्मली यही कहा जाता है कुछ ना कहो, लेकिन 180 डिग्री का टर्न लेते हुए मैं ये कहूंगी कि क्या कुछ कहना बहुत जरूरी है, और जब मैगजीन शो होगा तो कुछ ना कुछ तो कहना ही पड़ेगा. खबर पर नजर भी होगी, शॉर्ट स्टोरी भी होगी, आपके मैसेजेस भी होंगे, इधर उधर की बातें भी होंगी, सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है तस्करा तो होगा, गाने कौन से अच्छे हैं, क्या डिमांड में है, बात तो होगी, यानी बहुत कुछ कहना ही पड़ेगा. लेकिन इन सब चीजों से हटकर जो बात कहना है वो ये है कि क्या कहना जरूरी है. आज कहना जरूरी है, वही वाला गाना याद आया होगा. कभी कभी कोई बात कहनी बहुत जरूरी हो जाती है, तो आज मुझे ये बताइए आप जरा सोच के समझ के. बहुत से लोग कह देते हैं आप मुश्किल सवाल करती हैं, ये वाकई आज का जो बात है ना, ये तो कुछ मुश्किल है ही. क्या कहना जरूरी है, क्या कहना जरूर चाहिए, या कोई फायदा नहीं है, कहने का भी क्या फायदा है, लेकिन क्यों दिल में रखे, कहना कितना जरूरी है आज आपने बताना है. 07703403020 हमारे स्टूडियो का व्हाट्सएप मैसेज के लिए नंबर है. इसमें बताइए क्या कहना जरूरी है, कोई भी बात क्या कहना जरूरी है, इसको थोड़ा सा और अभी एक्सप्लेन करेंगे, एलैबोरेट करेंगे इन अ मिनट. अभी चलते हैं एक ब्रेक की तरफ. इतनी देर में आप सोचिए कुछ कहना जरूरी है क्या.
0: The Magazine Show with Robina Khan.
2: Like a radio.
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड, और उत्सव भारत है स्टार भारत.
4: Starfall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
5: Call 0208-574-8410. 0208-574-8410.
6: Starfall Travel can take you there.
7: Starfall Travel, at all protected.
8: Location, location, location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
9: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
8: high appreciation.
9: In Dubai.
10: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
11: Pepe's Piri Piri is turning up the heat in Bolton, with grills fired up and ready to serve you flame-grilled Piri Piri favourites. Derby Street in Bolton, Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
12: Royal Chai laaye hain smart solution for your business.
13: Get a Royal Chai vending machine free. Perfect for cafes, restaurants, offices, shops, petrol stations or community spaces.
12: Rich, authentic taste every single time.
13: Royal Chai, brewed for business.
12: Email now, info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
14: Caratino Better Ghee, the healthier, low price, cholesterol free, butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
0: New hits on Leica Radio.

0: Listen to the freshest hits added daily on Leica Radio.
1: और यहाँ मैं आपके लिए एक मैसेज है और ये मैसेज बहुत इम्पोर्टेंट है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो थिएटर में जाके देखना चाहते हैं। तो भास्कर पटेल आपको हंसा देने वाली और दिल को छू लेने वाली कॉमेडी में एक शानदार कास्ट की क़यादत कर रहे हैं। ये खान फैमिली की कहानी है और ये कहानी 1971 में सल्फर में तरतीब दी गई है। शोहर जॉर्ज, उनकी बीवी एला और उनके 7 बच्चों के साथ सफ़र कीजिए दो सकाफतों के दरमियान ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ईस्ट एसिस्ट जुमा 4 सितंबर से हफ्ता 3 अक्टूबर तक, अभी बुकिंग करें octagonbolton.co.uk। और इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि अयूब खान दीन की मशहूर कहानी अपने शुमाली जड़ों के साथ यानी अपनी रूट्स के साथ दोबारा बोल्टन के थिएटर में वापस आ रही है और इसको आप बिल्कुल भी मिस ना कीजिए। ये कैसी फैमिली की कहानी है जो आपको क्या कल्चर होता है और किस तरह से दो कल्चर्स के दरमियान लोग रहते हैं उसको बताती है। तो जबरदस्त ये एक थिएटर है और हंसाने और रुलाने दोनों फैक्टर्स जो है इसमें आपको मिलेंगे। सो डू वॉच इट।
0: दिस इज द लाइका रेडियो नेटवर्क। यू हर्ड द लाइका ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ लाइका रेडियो एंड लाइका गोल्ड इज वंस अगेन द नंबर वन एशियन कमर्शियल ग्रुप इन ग्रेटर लंदन। एडवर्टाइज टुडे अक्रॉस आवर 4 stations on 0161 250 8222 or sales@leicamedia.co.uk।
2: तारिक हलाल ने इस अजान को स्पॉन्सर करके सदकाए जारिया कमाया है। दुआ है कि इनके इस नेक फेल से इनकी दीन और दुनिया में भलाई हो। विजिट कीजिए tarikhalal.com।

0: तारिक हलाल नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में तारिक हलाल फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी पाने के लिए आज ही राब्ता कीजिए tarikhalal.com.
1: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

0: Breaker Radio.
1: नजर ना लग जावे, आप ब्यूटीफुल ट्रैक सुन रहे थे। आप हमारे सवाल का जवाब दे रहे हैं और सवाल इंटरेस्टिंग है। हो सकता है आपके किसी जवाब से या आपकी थॉट शेयर करने से किसी को फायदा हो जाए। मतलब बात मैं ये कर रही हूँ कि कुछ ना कहना बेहतर है या कुछ कह देना बेहतर है। दिल में लोग रखते क्यों हैं, उसका क्या फायदा है, डरते हैं या ये कि समझते हैं कि दिल से बात अगर आपने किसी को बता भी दी तो कौन सा कोई बहुत फर्क पड़ जाएगा, कौन सा पहाड़ तोड़ लेना जितनी, या फिर ये लगता है, डर लगता है कि कहीं अगेन 160 डिग्री का टर्न ही ना ले ले अगला। उसका मतलब ये है कि बिल्कुल ही मुखालिफ सिमत ना हो जाए, यानी अच्छा होते होते बुरा ना हो जाए, ज्यादातर क्या ये डर लगता है। सो कुछ भी कहना कुछ ना कहो से कुछ भी कहना क्या बेहतर है। अनखान आपने लिखा है कुछ कहने से सुकून मिलता है, लिहाजा कह लेना चाहिए और आपको शो अच्छा लगता है, आप ये कह रहे हैं। अच्छा, ये भी जरूरी है कि अगर आपको कोई चीज इन जनरल, जैसे कि अभी आप कह रहे हैं कि शो अच्छा है, तो आपको कहना चाहिए, क्यों नहीं कह सकते, और आप लोग कहते हैं। लेकिन मैं इन जनरल ये पूछ रही हूँ कि हमारी डेली लाइफ में कोई ना कोई ऐसी बात जरूर होती है जिसको हम दबा कर बैठे रहते हैं, हम सोचते हैं कि ना कहें, कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ वैसा ना हो जाए, क्या कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। आपके बहुत से मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, लेकिन मैसेजेस में थोड़ा सा इस जवाब, एक लाइन का जवाब चाहिए, वन लाइनर भी दे दें तो बड़ा है। सो ये फिर वर्थ हो जाएगा कि हम लोगों को कोई पैगाम दे सकेंगे, कुछ कहना जरूरी है या नहीं, सिंपल इज दैट।
0: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: So, आपको बता दें कि आज US डॉलर आपको 1 पाउंड के एक्सचेंज में मिलेगा 1.35 डॉलर्स, इंडियन रुपीज 129.28, पाकिस्तानी रुपीज 376.84, बांग्लादेशी टकर्स 167.05, श्रीलंकन रुपीज 450.26, अफगानी 88.55। सो ये थी करेंसी एक्सचेंज रेट।
0: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKER. Download LemFi now. T's and C's apply. This is LIKER Radio, Greater Manchester. Formerly known as Asian Sound Radio. LIKER Radio. A LIKER Radio classic. Plays now.

0: का रेडियो।
1: सो जी आपको मालूम ही है कि शोले फिल्म से ये गीत था, किशोर कुमार मन्ना डे की आवाजें थी। कोई फिल्म इतनी भी मशहूर होती है क्या जैसे कि शोले थी। सो एनीवेज आपके मैसेजेस मिल रहे हैं, कुछ कहना चाहिए, दिल में रखना चाहिए, कोई कंप्लेन है वो करनी चाहिए किसी के साथ, या ज्यादातर इंसान यही सोचता है कि नहीं कहना चाहिए, चलो जान दो। मट्टी पाव वाला जो है ना, जिसको कहते हैं कि मट्टी पाव, वो वाली चीज ज्यादा है कि छोड़ दो, रहने दो, एटसेट्रा। मैसेजेस कल भी बात आप कह रहे हैं कि आप ट्यून इन रेडियो पर सुन रहे हैं, वाला जी बहुत ही अच्छा, बले बले आप सुनिए। और तारिक एवान आपका मैसेज है, शुक्रिया आपका भी। और मलिका आपने मैसेज किया है, शुक्रिया एसपी सज्जाद। एक्चुअली मैं आपसे रिक्वेस्ट ये कर रही हूँ कि अपनी विचार, अपनी थॉट्स, अपनी सोच मेरे साथ शेयर करें। और अगर लिखना बचकत होता है, मैं खुद भी ये समझती हूँ कि वॉइस नोट बहुत आसान होता है, तो अगर आप सोचते हैं कि वॉइस नोट में आप ज्यादा अच्छी तरीके से कोई भी बात बता सकते हैं, दिल की बात, तो उसी तरह मुझे वॉइस नोट कर दीजिए, मैं सुन लूंगी। वदिया जी जो वॉइस नोट होगा उसको मैं प्ले भी करूंगी, क्योंकि वो तो फिर डिजर्व करता है कि दिल की बात। दिल में वो कौन लोग होते हैं जो रखते हैं, डरते हैं दुनिया से, या ये कि सोचते हैं कि छोले छोड़ो जान दो, और ये कि क्या फायदा हो जाना है। फायदा नुकसान दुनिया बहुत देखती है। वैसे आपने कभी देखा है, हर चीज का लोग पूछते हैं क्या फायदा है, इसमें फायदा क्या है, ये नहीं पता कि एक आज की स्टोरी वैसे इस चीज पर बेस करती है। जो लोग हमेशा फायदा नुकसान देखते हैं ना, वो कुछ भी नहीं करते दूसरों के लिए, और वो कहते हैं नहीं नहीं हमारा पर्सनल एडवांटेज एडवांटेज क्या है, हमें क्या फायदा निकलेगा, हमारा क्या प्रॉफिट हमें होगा, वगैरह वगैरह। तो स्टोरी जो है आज का, आज की जबरदस्त है, वो उसी में है, इसी के ऊपर है।
0: The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
1: Indeed, this is Leica Radio. आज का गोल्ड रेट है 103.97 पेंस। सो ये 1 ग्राम 24 कैरेट का 1 ग्राम गोल्ड का रेट है।
0: Gold Rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com. Like a radio. The Magazine Show with Robina Khan.
2: Like a radio. Smash hit run in 2025, Surrenderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bungalow and The Deranged Marriage, Rivco Theatre Company turned this classic Panto tale on its head and give it an exciting Disney twist. Touring to the Palace Theatre.

0: लता मंगेशकर, जो बात हम कर रहे हैं ये उससे बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि ये है प्योर रोमांस 1942, अ लव स्टोरी, और ये वो बात है जिसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि दोनों एक ही वेवलेंथ पर हैं। Like a radio. हम बात कर रहे हैं उस कहने की जिसमें किसी को बताना जरूरी है, जरूरी होता है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है। आपको किसी से मोहब्बत है, आपको किसी से शिकायत है, आपको कोई मसला है किसी से, अगर आपको कहेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा ना। तो मैं उस बात की बात कर रही हूँ, ये नहीं कि हाँ कुछ ना कहो क्योंकि हम दोनों को सब कुछ पता है, वो वाला नहीं, वो किस्सा ही अलग है, वो स्कूल ऑफ थॉट ही अलग है, जहां पर एक वेवलेंथ होती है, जहां पर कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। तो चलिए इसके बारे में तो बात होगी, लेकिन आज मैं आपको ये बता दूं कि अभी इस वीक भी और बहुत से कॉम्पिटिशन होंगे हमारे शो में। अगर आप भी मेरी तरह आतिफ असलम के फैन हैं तो मैनचेस्टर में हो रहा है कॉन्सर्ट 11 सितंबर को, फ्राइडे को, और ये कॉन्सर्ट होगा एओ अरीना पर। इस कॉन्सर्ट में अगर आप जाना चाहते हैं, टिकट्स विन करना चाहते हैं, तो आज के प्रोग्राम को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है आपका नाम आए, लेकिन उसके लिए आपको टेक्स्ट मैसेज करना होगा, आतिफ का नाम लिखकर भेजिए, आप वर्ड आतिफ लिखकर टेक्स्ट कीजिए, और अगर आप नहीं विन कर सके आज, लेकिन ये कॉम्पिटिशन कई दिन चलेंगे, तो टिकट मास्टर से अपने टिकट को बुक करवा लीजिए, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत शो होगा। विनर जो है, कमिंग बैक टू द कॉम्पिटिशन थिंग, के विनर टिकट्स विल बी सेंट वाया द टिकट मास्टर ऐप, सो प्लीज इंश्योर यू शेयर योर ईमेल एड्रेस दैट इज रजिस्टर्ड टू द ऐप, टीज एंड सीज अप्लाई, यानी आप अपनी उस ईमेल से जो आपका टिकट मास्टर, वही ईमेल इस्तेमाल करिए जो टिकट मास्टर के जरिए आप उसी ऐप पर, जो कि टिकट मास्टर भी आपको अप्रोच कर सके, वही ईमेल, रजिस्टर्ड ईमेल से आप हमें उस ईमेल को हम तक पहुंचाइए। आतिफ का नाम लिखकर भेजना है, आपने अपना नाम लिखकर भेजना है, अपना ईमेल एड्रेस हमको भेजना है, फोन नंबर लिखकर भेजना है, ये जरूरी जरूरी चीजें हैं जो आप जरूर कीजिए। और सुनिए पाकिस्तानी सॉन्ग।
1: पाकिस्तानी हिट ऑफ द आवर इज ब्रॉट टू यू बाय द लाइका रेडियो मोबाइल ऐप, लिसन लाइव एंड लिसन बैक टू योर फेवरेट शोज़।

0: मधुश थी और मलिका तरन्नुम नूर जहां की आवाजें फिल्म शो विद रबीना खान लाइक अ रेडियो फिल्म अंदलीप के लिए. अयूब चौहान साहब, आपने मैसेज किया और आपने कहा कि शबनम बेगम की, बल्कि शबनम ही कहना चाहिए, खाली कुछ है हमारी आर्टिस्ट पाकिस्तानी जो बेगम साथ लगाती है, लेकिन शबनम की आज बर्थडे है और आप अंदलीप फिल्म से उनका गीत सुनना चाह रहे थे, तो ये आपके नाम के आपने रिक्वेस्ट किया, आप सुन रहे हैं. और बहुत से मैसेजेस मुझे रिगार्डिंग टू आर क्वेश्चन, कुछ ना कहो उसके हवाले से आ रहे हैं जी, कुछ कितना कहना जरूरी है या कितना गैर जरूरी है. अभी आपके वॉइस नोट्स भी हैं, सब सुनूंगी, लेकिन मजे की बात यह है कि आतिफ असलम के आप ग्रेट ग्रेट ग्रेट फैंस हैं, क्योंकि आपके मैसेज आतिफ लिख कर भेजा है. फोन नंबर जरूर लिखिए, नाम लिखिए, ईमेल लिखिए, ये तीन चीजें जरूरी जरूरी हैं कि आप हमसे शेयर करें. और ये लाइक रेडियो नेटवर्क टीम अप विद एनएमबी प्रोडक्शन एंड रियानाज म्यूजिक टू गिव अवे टिकट्स टू आतिफ असलम लाइव इन कॉन्सर्ट एट द एओ अरीना मैनचेस्टर ऑन फ्राइडे 11 सितंबर. वन पर्सन विल वॉक अवे विद अ पेयर ऑफ टिकट बिफोर द एंड ऑफ the hour, second hour, okay? Not this hour, but second hour. So, आपने क्या करना है? आपने हमें send करना है word लिख के, sorry, word लिखिए आतिफ और आप हमें भेज दीजिए. और अपना नाम, अपना phone number, अपना email address जरूर व जरूर हमें लिख कर भेजिए. और next hour में हम बताएंगे आपको कि winner कौन है. घंटा मैं आपको दे रही हूँ, बल्कि एक घंटा तकरीबन 20 मिनट. कहते हैं ना जी, अग्गे आपके भाग. पूरा जुमला नहीं सकाऊंगी, लेकिन किसी ना किसी के भाग में तो एक टिकट आएगा.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: जी, अगर आप इंडिया मनी सेंड करना चाहते हैं तो आज वन पाउंड के एक्सचेंज में आपको मिलेगा 129.28 इंडियन रुपीस. एंड डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और एसबीआई योनो मोबाइल ऐप. टीज एंड सीज अप्लाई.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. The Magazine Show with Rabina Khan. Like a radio.
2: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
1: One performer.
3: टीवी के सामने पोसम से कहने क्या पहनी है तुमने साड़ी भैया खिलाड़ियों के खिलाड़ी.
4: Countless personalities.
5: जिंदगी बर्बाद हो गई है.
1: A whole universe of entertainment.
6: चैनल में फंक्शन रखा हुआ है.
4: Sunil Grover live UK tour 2026.
1: 29th October OVO Arena Wembley London. 31st October Mattioli Arena Leicester.
4: From Gutti to Dr. Mashur Gulati, from Rinku Bhabhi to brand new surprises, experience Sunil Grover live on stage in the UK.
1: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
4: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
1: For more information, contact 07585-801-801. Official radio partner, Leica Radio Network.
7: कडल से लेकर हॉस्पिटल तक, स्कूल रन से लेकर एम्बुलेंस की सायरन तक, बेबीज, छोटे बच्चे और टीन्स में मीजल्स, मेनिंजाइटिस और न्यूमोनिया जैसी बीमारियां बहुत सीरियस हो सकती हैं और जान को खतरा हो सकता है. अपने बच्चे को वैक्सीन लगवाना उन्हें सेहतमंद और महफूज रखने का सेफ तरीका है. बच्चों के लिए NHS वैक्सीन अवेलेबल है. NHS GM चाइल्ड वैक्स सर्च करें या अपने GP प्रैक्टिस से राब्ता करें.
8: Celebrate 30 years of East is East as Ayub Khan Din's iconic story returns to its northern roots at the Octagon Theatre in Bolton.
9: Don't miss Bhaskar Patel leading a stellar cast in this hilarious and heartfelt comedy about the Khan family. Set in Salford back in 1971, follow husband George and his wife Ella and their seven children as they navigate life between two cultures.
8: See East is East from Friday 4th September to Saturday 3rd of October. Book now at octagonbolton.co.uk.
10: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल.
11: यू मीन सफ्टल ट्रेवल?
10: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर.
11: एक बार आजमाइए जरूर सफ्टल ट्रेवल.
10: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
11: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए.
12: कॉल सफ्टल ट्रेवल 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक ऑन 0161 250 1250. दैट्स 0161 250 1250.

0: Marcello Felice
1: The Magazine Show with Robina Khan. Like a radio,
0: the magazine show. अभी जो एमए सुना आपने, असल में ये एमए सा सॉन्ग नहीं था, ये बड़ा जबरदस्त सॉन्ग था, इसीलिए तो प्ले किया है. सो एनीवेज, अभी आपने सुना, और इस फिल्म का नाम भी बता दूं, बैंड बाजा और बारात फिल्म थी 2010 की. और इससे पहले जो आपने गीत सुना, रैना कोल, जबरदस्त, जुबिन नौटियाल और ज़ारा खान की आवाजें थी, और लव यापा. बड़ा मुश्किल से पढ़ा मैंने, लेकिन इसका जो जब मैंने समझ में आया कि ये लव यापा है, तो फिर बड़ा आसान हो गया, यानी स्यापा के वजन पर. दोनों चीजें एक सी है वैसे, लव हो या स्यापा हो, तो सही, बिल्कुल सही फिल्म का नाम है लव यापा. अंदर से हर किसी को उर्दू और पंजाबी जानने वाले को पता है कि ये कुछ स्यापा से मिलती जुलती चीज है. सो एनीवेज, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए. बहुत सारे बेशुमार मैसेजेस हैं, और आप सब जानते हैं कि आतिफ असलम के कॉन्सर्ट के लिए हम आपको आज टिकट भी दे रहे हैं. तो इस आवर में भी आपके पास चांस है कि आप आतिफ वर्ड लिखकर भेजिए. और आपने कहाँ भेजना है, आपको मालूम है, नहीं मालूम बता देती हूँ. 07703403020 हमारे स्टूडियोज का व्हाट्सएप का नंबर है, जिस पर आप टेक्स्ट मैसेज के जरिए लिखिए आतिफ, एंड देन अपना नाम, अपना फोन नंबर और अपना ईमेल एड्रेस जरूर लेकर भेजिए, ताकि हम आपको कंपटीशन में शामिल कर लें. लाइक रेडियो नेटवर्क टीम अप हुआ है विद एडएमबी प्रोडक्शंस एंड रेनाज म्यूजिक टू गिव अवे टिकट्स टू आतिफ असलम, जो कि लाइव कॉन्सर्ट हो रहा है एट द एओ अरीना मैनचेस्टर ऑन फ्राइडे 11 सितंबर. सो एक पर्सन को आज टिकट मिलेगा, बाकी लोग जो हैं वो टिकट खरीद भी सकते हैं टिकट मास्टर से. सो अब एक बहुत ही अच्छा सा गीत सलमा आगा की आवाज में, मोहम्मद अजीज साथ होंगे, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा.
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स.

0: हम कुछ और पूछ रहे हैं, ये कुछ और कह रही है। हम आज पूछ रहे हैं आपसे कि क्या कहना जरूरी है। अब सलमा की बात माने, मोहम्मद अजीज की बात माने, लेकिन आपके दिल में क्या है कि कहना जरूरी होता है? मैसेज कीजिए कि अपने दिल की बात कहनी जरूरी है या नहीं। चलने दो, ऐसे ही काम चलता है। ब्यूटीफुल ट्रैक,
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर, स्पॉन्सर बाय कोका नूडल्स, मोर फ्लेवर्स, मोर कन्वीनियंस, मोर यम। ग्रैब योर कोका बोल टुडे। The Magazine Show with Robina Khan. आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
2: सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच या शाम का डिनर, सब कुछ एक ही जगह। बल्कि नाश्ता अवेलेबल ऑल डे। तहजीब स्वीट्स, बेकर्स एंड रेस्टोरेंट्स में एंजॉय करिए हलवा पूरी, पाए, निहारी, मगज, पराठे और बिरयानी। साथ ही लजीज डिजर्ट्स, फालूदा, शेक्स, कड़क चाय, कॉफी और ठंडी लस्सी का मजा लें। ग्रैंड ओपनिंग ऑन जुलाई 11th। आज ही तशरीफ लाइए, 881 स्टॉकपोर्ट रोड, मैनचेस्टर, M19 3PG। तहजीब स्वीट्स, बेकर्स एंड रेस्टोरेंट, हर वक्त हर जायके के लिए।
3: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
4: Location, location, location. Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danio, prime location,
4: high appreciation
5: in Dubai.
6: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान। फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410। साउथ हॉल ट्रेवल,
7: ऑटो प्रोटेक्टेड।
8: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
9: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
8: जयमिन फूड्स, देसी क्रेविंग्स, अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।

0: मास्टर पानी पूरी और पानी पूरी का पानी.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: Asian Achievers Awards, Friday, September 18th at London Hilton Park Lane. Exclusive radio partner, Leica Radio Greater London.
3: लगन लग तुमसे मन के लगन, लगन लग तुमसे मन के लगन, लगन लग तुमसे मन.
4: आपका नया स्टेशन Leica Radio Ghazals बहुत जल्द आ रहा है.
2: This is Leica Radio.

0: सो जी, आपने गीत सुना, म्यूजिक अच्छा था, आई होप आपको पसंद आया होगा। और अब एक मरतबा और आपको बता दूं, याद दिला दूं कि लाइक रेडियो नेटवर्क टीम्स अप विद डेम्पी प्रोडक्शंस एंड रियोनर्स म्यूजिक टू गिव अवे टिकट्स टू आतिफ असलम लाइव इन कॉन्सर्ट एट द एओ अरेना मैनचेस्टर ऑन फ्राइडे 11th September। वन पर्सन विल टेक अवे विद और वॉक अवे विद वन पेयर ऑफ टिकट, यानी दो टिकट्स मिलेंगे बिफोर द एंड ऑफ द आवर, आज ही इसी घंटे के एंड पे। सेंड इन द वर्ड आते फॉर यू टू बी टू विन। इफ यू डोंट विन, डोंट वरी, यू कैन परचेज फ्रॉम टिकट मास्टर। ये तो बिल्कुल तय है, आप टिकट मास्टर से टिकट खरीद सकते हैं। लेकिन एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लोग जो इस वक्त इसमें कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेंगे और आतिफ लिख कर भेजेंगे हमें टेक्स्ट मैसेज जिसका नंबर 07703403020 है, आपको ये आपके लिए जरूरी है कि विनर टिकट विल बी सेंड वाय द टिकट मास्टर एप। सो प्लीज एंश्योर यू शेयर योर ई मेल एड्रेस इज दैट इज रजिस्टर्ड टू द एप। टीज एंड सीज अप्लाई।
1: Leica Radio. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: करेंसी एक्सचेंज रेट, £1 का एक्सचेंज रेट यूएस डॉलर में आपको मिलेंगे 1.35 यूएस डॉलर्स, इंडियन रुपीज 129.28, पाकिस्तानी रुपीज 376.84, बांग्लादेशी टकर्स 167.05, श्रीलंकन रुपीज 450.26, अफगानी 88.55 अफगानीज।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Leica Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands with the UK's biggest Asian hits. A Leica Radio classic plays now.
0: कुछ कुछ बहुत से गीत सुना दिए, थोड़ा थोड़ा हार्ट ब्रेक वाला गीत है लेकिन आप सब लोगों को जरूर पसंद आएगा। मेरा नाम जोकर, फिल्म का नाम है 1970 की फिल्म, मुकेश की आवाज। कौन है जो पिछले दिनों को याद नहीं करता, गुजरे हुए वक्त को याद नहीं करता। हमें रहना तो हाल में चाहिए लेकिन हम ज्यादातर रहते पास्ट में है। बहरहाल याद तो आती है, जाने कहां गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बचाएंगे, चाहेंगे तुमको उम्र भर। मुकेश, वन एंड ओनली।

0: पाकिस्तानी सॉन्ग अभी आप सुन रहे थे, फिल्म का नाम था दामन और चिंगारी।
1: This is Leica Radio, Greater Manchester, formerly known as Asian Sound Radio. Leica Radio. The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
0: Latest gold rate today is 103.97 per gram.
1: Gold Rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.
2: Leica Radio.
1: Leica Radio.
0: सुजी लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर, यहाँ पर आपको एक लाइव रीड बताना चाहती हूँ। पॉडकास्ट नई जो रिलीज हुई है, टाइटल है ए गोल्ड रियलिटी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, और इस पॉडकास्ट को होस्ट किया है रवि शर्मा जी ने। और रवि शर्मा स्पीक टू मिस्टर परवीन पत्नी एंड डायरेक्टर ऑफ मीनार ज्वेलर्स अबाउट हाउ गोल्ड प्राइसेस आर इफेक्टिंग कस्टमर्स एंड परचेजिंग डिसीजंस। सो ये एक इम्पॉर्टेंट है, हम देखते अप एंड डाउन होते हैं गोल्ड में, लेकिन इस पॉडकास्ट को सुनिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि गोल्ड किस तरह से बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। लाइक का एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल है ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजोन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स।
1: नोन एज एशियन साउंड रेडियो लाइक एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट। लाइक एक्स्ट्रा इज हियर, द मैगजीन शो।

फट रहा है, कह निके निके गलते गुस्सा नहीं करीदा। सुरीला सा गीत आप सभी के लिए जी। तो अब वो वक्त है जब आतिफ असलम लाइव इन कॉन्सर्ट एट एओ अरीना मैनचेस्टर ऑन फ्राइडे 11th September और वन पर्सन विल वॉक अवे विद अ पेयर ऑफ टिकट्स बिफोर द एंड ऑफ द दिस ऑवर। और एंड बिल्कुल करीब आ गया है और मेरे पास विनर का नाम भी आ गया है। विनर का नाम, विनर का नाम क्या है, कौन है, कहां से है? कौन है विनर? चलिए जी, इतना भी सस्पेंस अच्छा नहीं होता। बहुत से लोगों ने आज एंटर किया इस कंपटीशन में, बेशुमार लोगों ने, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। विनर एक ही होता है, लेकिन वरी ना करें, अभी कॉम्पिटिशन भी होने हैं और इसके अलावा आप टिकट मास्टर से टिकट परचेज भी कर सकते हैं। आज के विनर जो हैं, जिनके लिए क्लैपिंग्स है, वो है नफीसा महमूद। आपने अ पेयर ऑफ टिकट विन किया है आज, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन एंड वंस अगेन, बहुत सी क्लैपिंग्स आपके लिए। ओके, और नेक्स्ट सॉन्ग।

0: Magazine Show with Robina Khan. Leica Radio.
1: प्रोग्राम का थर्ड एंड फाइनल आवर शुरू हो चुका. दो गीत भी आप सुन चुके, अदनान समी खान और लता मंगेशकर की आवाजें थी शायद यही प्यार है, और उससे पहले सोनू निगम की आवाज में सुन जरा. हमने आपके लिए दो गीत प्ले किए, उम्मीद करते हैं आप जहाँ भी हैं वंडरफुल एक्सलेंट जबरदस्त सॉन्ग है. और प्रोग्राम के फर्स्ट आवर में मैंने आपके लिए दो ऐसे सॉन्ग प्ले किए थे, कुछ ना कहो और कुछ भी ना कहो, ये तो एक ही बात है. लेकिन वो एक डिफरेंट बात थी. उससे बात और सवाल ये था कि क्या इंसान को कुछ ना कुछ कहना चाहिए, या दिल में छुपी बात, चाहे वो मोहब्बत है, चाहे वो शिकायत है, चाहे वो गलत फहमी है, गलत फहमियां भी हो जाती हैं, तो क्या उनको दूर करना चाहिए. इसका मुझे कोई इतना कहना चाहिए स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब नहीं मिला. एक तो होता है ना, कहें जी हम अयूब साहब ने लिखा, जी मैं ज्यादातर खामोश रहता हूँ, वक्त पे बात कह देता हूँ, ये एक स्ट्रेट बात ही जो अयूब साहब ने कही. फिर जमा आपने कहा कि किसी को कहना हो तो आजकल तो जमाना ही नहीं है कुछ कहने का. वो कहना डांटने वाला कहना नहीं, कहना ये है इजहार की मैंने बात की थी. और ये एक थोड़ी सी पोइटिक बात भी है कि क्या किसी को कुछ कहना जरूरी होता है या आपकी बात पहुंची जाती है. और दूसरा ये कि क्या अगर हम गलत फहमियों की बात करें, इसको जो ग्राउंड रियलिटी है लाइफ की, गलत फहमियाँ होती हैं, शिकायतें होती हैं, रंजिशें होती हैं, उनको दूर करना चाहिए. और क्या बाज लोगों का ऐसा भी एक्शन होता है वो आपको सही लगता है कि बस वो कहते हैं कि चलो ठीक है, खामोशी से मूव फॉरवर्ड होते हैं और ऐसा एक्ट करते हैं कि उनसे कोई गलती नहीं हुई. तो गलतियों को मान भी लेना चाहिए, इसके बगैर दिल की रंजिश कहाँ निकलती है. और कुछ लोग बिल्कुल 180 डिग्री का टर्न लेते हैं, जो कुछ कहा होता है उसे वो कर जाते हैं, ऐसा भी होता है. सो आपसे कल पूछूंगी.
0: The Magazine Show with Robina Khan.
2: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
3: Location, location, location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
4: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
3: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
3: high appreciation,
4: in Dubai.
5: Celebrate 30 years of East is East as Ayub Khan Din's iconic story returns to its northern roots at the Octagon Theatre in Bolton.
6: Don't miss Bhaskar Patel leading a stellar cast in this hilarious and heartfelt comedy about the Khan family. Set in Salford back in 1971, follow husband George and his wife Ella and their 7 children as they navigate life between two cultures.
5: See East is East from Friday 4th September to Saturday 3rd of October. Book now at octagonbolton.co.uk.
7: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
8: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
9: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
8: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
9: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
8: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
9: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
10: Pepe's Piri Piri is turning up the heat in Bolton with grills fired up and ready to serve you flame-grilled Piri Piri favourites. Derby Street in Bolton. Pepe's Piri Piri. Definitely worth a visit.
0: Seven stations. One podcast. One mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0161 250 8222 or sales at leicamedia.co.uk.
11: Cool music
12: for a super hot summer time.
11: Sponsored by Lems on the Leica Radio Network.
12: Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: करेंसी एक्सचेंज रेट आपको एक बार फिर बता दें, आज 1 पाउंड के एक्सचेंज में आपको यूएस डॉलर्स मिलेंगे 1.35 डॉलर्स, इंडियन रुपीज 129.28, पाकिस्तानी रुपीज 376.84, बांग्लादेशी टका 167.05, श्रीलंकन रुपीज 450.26, अफगानी 88.55, अफगानी.
13: Leica Radio.
11: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Leica Radio, Greater Manchester. Formerly known as Asian Sound Radio.
13: Leica Radio.
11: A Leica Radio classic. Plays now.

0: Magazine Show with Robina Khan. Short, heart-touching stories with Robina Khan. Like a radio.
1: वक्त हुआ है आपसे शेयर की जाए एक शॉर्ट स्टोरी और कुछ सीखा जाए उससे. वैसे तो कहानी का कोई भी उन्वान हो सकता है, जैसा कि कोई अच्छी कहानी होती है तो उसमें बहुत से कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन मैं इस शॉर्ट स्टोरी का जो टाइटल है वो रख रही हूँ चिराग, रोशनी या किसी के लिए काम, कुछ भी रखा जा सकता है. क्योंकि बास चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप अपने लिए करते हैं, रोशनी आप अपने लिए जलाते हैं ताकि आपको नज़र आए, और वो रोशनी जो विजडम की रोशनी होती है वो इसलिए कि आपको फ़ायदा हो, लेकिन कुछ लोग दूसरों के फायदे के लिए काम करते हैं. ये कहानी जो है ये ऐसी ही एक औरत की कहानी है, और जो एक गांव में रहती थी और बिल्कुल अकेली भी रहती थी. गांव के कोने में उसका घर था, रास्ता बहुत अंधेरा कच्चा था, बहुत ही बेसिक किस्म का गांव था जहां पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं थी. अब वो हर रात ऐसा करती थी कि अपने घर के बाहर एक चिराग जला देती थी. लोग पूछते थे कि ये आप चिराग क्यों जलाती हो रात को, एक तो आप इतने दूर कोने में रहती हो, यहाँ पे कौन आता है, किसको चिराग की जरूरत है. तो वो औरत हमेशा कहती कि रात को जो मुसाफिर, मजदूर या बच्चे इस रास्ते से गुजरे, कभी चांस हो उनको ऐसा कि वो गुजरे तो उनको ठोकर ना लगे, वो अंधेरे में डर ना जाए, उनको रास्ता कुछ ना कुछ तो नजर आए. तो बहुत सालों ऐसे ही वो करती रही, कभी भी अपनी इस प्रैक्टिस को उसने बंद नहीं किया है. और एक दिन ऐसा ही हुआ बाय चांस कि एक कोई बीमार हो गया शख्स, तो एक डॉक्टर भी था वहां पर, वो उसको देखने जा रहा था. वो बिल्कुल रात अंधेरी थी तो फिसलने लगा था कि वो बच गया, और उसके साथ ही ये कि वो वक्त पर पहुंच गया क्योंकि उसको रास्ता मिल गया, वो मरीज तक पहुंच गया, उसने उसकी जान बचा ली. तो सब लोग जो हैं वो बहुत खुश हुए कि देखो ये एक चिराग की वजह से हुआ, एक रोशनी की वजह से हुआ. लेकिन अक्सर लोग सिर्फ अपने लिए चिराग जलाते हैं, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, अपने लिए काम करते हैं, अपनी जिंदगी के लिए काम करते हैं. और अगर ख्याल हो कि कोई काम कम्युनिटी के लिए, किसी दूसरे के लिए करना हो तो वो बहुत देखते हैं कि इसमें फ़ायदा क्या है. और बहुत से लोग इसको ये इस तरह से भी लेते हैं कि कोई ना कोई फ़ायदा तो होगा जिसकी वजह से कर रहे हैं. लेकिन ये कार्मा है, जब आप कुछ अच्छा बगैर सोचे समझे करते हो और अच्छाई के लिए करते हो तो वो वापस आपके पास आता ही आता है. वो कहते हैं ना, दैट गोज राउंड कम्स राउंड, या जैसा करोगे वैसा भरोगे. कुछ चीज़ें अच्छी नीयत से अगर आप कर लें, इसमें रिगार्डलेस कि इसमें आपका कोई फाइनेंशियल फ़ायदा नहीं है, आप उसमें टाइम भी लगाते हैं, लेकिन आप किसी सोसाइटी के लिए, सोसाइटी आपको इतना कुछ देती है, उसको कुछ वापस भी करना चाहिए. तो ख्याल रखना, ऐसा लगता है कि बहुत छोटा अमल है, क्या छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन इसका असर बहुत ज्यादा होता है. एक चिराग अंधेरा मिटा देता है. जो दूसरों का ख्याल रखता है कुदरत उसका ख्याल रखती है, ये पक्की बात है. किसी भी मजहब में, किसी भी कल्चर में आप देख लें, उठाकर छान फटक कर लें कि जो दूसरों का ख्याल रखता है कुदरत उसका ख्याल रखती है. ये यूनिवर्स और आपका कोई भी मजहब है, खुदा, भगवान, सीता, मरियम, जो भी आप जिसको भी मानते हैं, कुदरत की तरफ से उसका ख्याल रखा जाता है, ये हो ही नहीं सकता. तो इसी नोट पर कि दूसरों का ख्याल रखेंगे तो हमें कुदरत हमारा ख्याल रखेगी, और इस लालच के बगैर ही करेंगे तो ज्यादा ख्याल रखेगी. लालच अच्छा नहीं हो सकता, और चक्कर देना भी अच्छा नहीं होता. जैसा कि अभी एक गाना था, सबको घुमा के जाएंगे, नहीं, बस स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधी अच्छी लाइफ, आई थिंक सो. गाने की तरफ चलते हैं और गीत भी वो.
0: The Pakistani Hit of the Hour is brought to you by the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
1: भाई भाषण सुनने के बाद आपका इतना तो बनता ही है कि आपको एक पाकिस्तानी स्वीट सा सॉन्ग सुनवाऊं. पंजाबी में हो तो और भी वदिया, सीधा रास्ता. ओ देखें, बाय चांस कुदरत, वैसे यूनिवर्स काम ऐसे ही करती है. हम भी सीधे रास्ते की बात कर रहे थे, रोशन चिराग वाले की. इतने भी रास्ता सीधा है, गाना क्या कहता है मैं कुछ नहीं कहती. इसमें जाहिरी ब्यूटी की बात हो रही है, मुख तेरा चन्ना, पता नहीं चन्न वर्गा लगता है, तो कुछ लोग वैसे ही चांद की तरह लगते हैं.

0: latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
1: आज का गोल्ड रेट है 103 pounds 97 pence और ये 1 gram गोल्ड का रेट है.
0: Gold Rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.
2: Leica Radio. ये है
3: Leica Radio.
1: और आपको याद दिलाना चाहते हैं कि उदित नारायण एंड आदित्य नारायण लाइव शो हो रहा है और 90s के बॉलीवुड लेजेंड उदित नारायण परफॉर्म्स विद हिज सन आदित्य नारायण एट ओवीओ अरीना विमले ऑन संडे 20th December. टिकट्स अवेलेबल हैं फ्रॉम टिकट मास्टर एंड AXS डॉट एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर है इसके लाइका रेडियो नेटवर्क. और एक दूसरी जो कहना चाहिए एंटरटेनिंग इवेंट आ रहा है वो सुनील ग्रोवर लाइव आएंगे कैक्टर कॉमेडी जीनियस सुनील ग्रोवर लाइव इन लंदन एओवीओ अरीना वेम्बले ऑन थर्सडे 29th October एंड लेस्टर में होंगे एट मेटियोली अरीना ऑन सैटरडे 31st October. टिकट्स एट AXS एंड इवेंट ब्राइट. उसके अलावा टिकट मास्टर से आप ले सकते हैं. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर है लाइका रेडियो नेटवर्क. और ये थी आपके लिए कुछ इंफॉर्मेशन आपकी एंटरटेनमेंट के लिए.
0: The Magazine Show with Robina Khan.
2: Leica Radio.
4: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान. फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410. दैट्स 8574-8410. साफो ट्रेवल Auto protected.
5: कडल से लेकर हॉस्पिटल तक, स्कूल रन से लेकर एम्बुलेंस की सायरन तक, बेबीज, छोटे बच्चे और टीन्स में मीजल्स, मेनिंजाइटिस और न्यूमोनिया जैसी बीमारियां बहुत सीरियस हो सकती हैं और जान को खतरा हो सकता है. अपने बच्चे को वैक्सीन लगवाना उन्हें सेहतमंद और महफूज रखने का सेफ तरीका है. बच्चों के लिए NHS वैक्सीन अवेलेबल है. NHS GM चाइल्ड वैक्स सर्च करें या अपने GP प्रैक्टिस से राब्ता करें.
6: Location, location, location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
7: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
6: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
6: high appreciation.
7: In Dubai.
8: Mom, have you bought some of those delicious noodles?
9: You mean Koka, the king of noodles?
10: Koka means delicious. Variety of flavors available in Koka packet, Koka cup and Koka bowl noodles. Suitable for vegetarians and halal approved. The king of noodles, Koka noodles, packets, cups and bowls, now available everywhere in the UK.
11: Caratino Better Ghee, the healthier, low price, cholesterol free, butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco. Asda, Morrisons and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
0: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
12: Hey, this is Riz Khan and I'm taking you home on drive. Weekdays 4 till 7 p.m. at Leica Radio Greater Manchester.
0: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: आरजू 90s का ये गीत था और हमारे आज और इस हफ्ते के आर्टिस्ट ऑफ द वीक हैं अक्षय कुमार, जिन्होंने जिनकी पहली जो एक्शन थ्रिलर थी वो खिलाड़ी, उससे उन्होंने जो है वो शोहरत हासिल की और उसके बाद अभी तक काम कर रहे हैं, बेहद अच्छा काम कर रहे हैं. सो आर्टिस्ट ऑफ द वीक अक्षय कुमार और ये थे हमारे
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: So India money send karna chahte hain to aaj aapko 1 pound ke exchange mein 129.28 Indian rupees milenge. Don't forget to exchange in branch online or SBI Yono mobile app. T's and C's apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. The Magazine Show with Robina Khan.
2: Like a radio.
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
4: After the smash hit run in 2025, Surinderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bhangra and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic Panto tale on its head and give it an exciting dizzy twist. Touring to the Palace Theatre, Manchester, Friday the 4th of September to Saturday the 5th of September. Click RifkoTheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight. Come join Surinderella this summer as she goes back into the Bollywoods. Surinderella, panto fun for all the family.
5: Radio partner Leica Radio.
6: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, लागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट रागासन.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.

0: से मर।
1: मोहम्मद रफी की आवाज अभी आप सुन रहे थे
2: द मैगजीन शो विद रुबीना खान लाइका रेडियो।
1: और इसके साथ ही द मैगजीन शो अपने अख्तिताम को पहुंचता है। आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया जहां कहीं आपने सुना और हमारा साथ दिया। प्रोग्राम में गीत आपको अच्छे लगे, कल एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी और जो मैसेजेस आज रह गए हैं, बहुत ज्यादा मैसेजेस थे, वो कल मैं शामिल करूंगी आपके। फिलहाल के लिए रिस्क खान का इंतजार कीजिए, रुबीना खान को इजाजत दीजिए।

0: Echo, microwave food.
1: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
2: Hold on, miss. 2055? We'll be grown-ups by then.
3: We're not having that, are we?
2: No. Oi, you there? Eat water and cans.
4: And fix those drips and drops.
5: And take shorter showers, yeah?
4: Because when we work together, it all adds up.
6: So come on, you lot. Search Let's Save Water.
7: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल.
8: You mean Subtle Travel?
7: Yes, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर.
8: एक बार आजमाइए जरूर Subtle Travel.
7: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
8: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए.
9: Call Subtle Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0161 250 1250. That's 0161 250 1250.
10: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
11: वेल, शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स.
10: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
12: Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Drive Time with Riz Khan. Sponsored by Pepe's Piri Piri.

0: Soft Gloss, other Stop Gloss.
1: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
2: आप होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर

ये जो जगह जगह दर्द की कहानियां सुनाता है, ये जो जगह जगह दर्द की कहानियां सुनाता है, फरेबी है, सब झूठ बताता है।

0: सबसे निराला
1: मैमस्टर पानी पूरी और पानी पूरी का पानी.
2: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
3: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
4: Drive Time with Riz Khan, sponsored by Pepe's Piri Piri.

0: मुंबई जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं लाइक अ गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइक अ रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। शो का नाम द इवनिंग शो विद अश्विनी। नया सप्ताह, क्या बात है, मोटिवेशनल मंडे मनाएंगे आप और हम साथ में यहीं पे। कंग्रेचुलेशंस, मंडे निकल गया, खुश हो जाओ, है ना। हो गया, शाम तक जब पहुंच जाते तो पूरे दिन भर में जितनी भी थकावट हुई वो पूरी थकावट दूर हो जाएगी भी, क्योंकि आप सभी ने ट्यून इन किया है ये फैंटास्टिक शो। फैंटास्टिक नहीं बोला है मुझे सैंडी ने यूज करने के लिए, ये लाइवली शो, ठीक है। आई वोंट यूज द वर्ड फैंटास्टिक। आई होप सैंडी सुन रहे हैं कि देखो मैं कितनी गुड गर्ल की तरह, उन्होंने जो कहा था कि नहीं अब तुम नहीं यूज करना फैंटास्टिक, ठीक है, ओके, नो वरीज। एनीवेज, तो अटेंडेंस रजिस्टर खुल चुके हैं, सभी के सभी प्यारे प्यारे धुरंधर अपनी अपनी अटेंडेंस यहाँ पे लगवा रहे हैं। पहले दो गीत जिनसे हमने इस आवर का आगाज किया, दामिनी फिल्म से कुमार सानू एंड साधना सरगम की आवाज में बिन साजन झूला झुलू, एंड उसके बाद में दूसरा आदमी से नजरों से कह दो। प्लेलिस्ट आप सबको बहुत पसंद आने वाली है, आप सब इस प्लेलिस्ट को लव करेंगे, मतलब ही पसंद करेंगे। सो सवाल लाई हूँ, यस। थ्योरी लाई हूँ, यस, बिल्कुल जी, मतलब टिक टिक टिक मैं सारी चीजें चेक करके आई हूँ, है ना। होता है ना कि हम कहीं जाने से पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि दरवाजा लगाया है कि नहीं, लाइट्स बंद किए कि नहीं, नल बंद किए कि नहीं, है ना, एक चेकलिस्ट होती है, बिल्कुल शो पे बैठने से पहले चेकलिस्ट होती है। सो आज मेरा सवाल आप सबसे क्या है, खाने पीने का सवाल है, भूख लगी है ना इसलिए, ओके, क्योंकि खाना खाने का टाइम हो गया है ना सभी का। तो आप अपना एशियन नाश्ता जो होता है, पराठे ले लीजिए, भाई वी आर महाराष्ट्रियन सो वी आर वेरी मच फॉन्ड ऑफ पोहे एंड उपमा, है ना, साबुदाना खिचड़ी, या फिर सेवैयाँ की भी हम लोग उपमा बना लेते हैं। चलिए मैंने चार आइटम्स तो आपको वैसे ही बता दिए, या फिर अब नॉर्थ इंडिया में तो बहुत पराठे खाए जाते हैं, साउथ इंडिया में इडली सांभर खाया जाता है ना, हर प्रदेश में अलग चीजें खाई जाती है। वुड यू लाइक टू हैव अपना एशियन वाला तगड़ा नाश्ता या सीरियल्स, बताइए आपकी चॉइस क्या होने वाली है। आपके जवाबों के लिए मैं रुकी हूँ और उसके बाद में नेक्स्ट ट्रैक जो सुना रही हूँ, वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक्स, मैं बोलूंगी नहीं, आप सुनिए।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिलेगा 129 इंडियन रुपीज एंड 30 पैसे। डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच, ऑनलाइन और एसबीआई योनो मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीस एंड सीस अप्लाई।
2: तेरे नैना,
3: तेरे नैना, तेरे।
2: तुम ऐसा करो, ये गाओ मैं।

0: is Ash Whitney on Leica Radio. Leica Radio. आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
1: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, लागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
2: लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
3: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
2: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Daniel, prime location,
2: high appreciation
3: in Dubai.
4: Pepe's Piri Piri is turning up the heat in Bolton. With grills fired up and ready to serve you flame-grilled Piri Piri favourites. Derby Street in Bolton. Pepe's Piri Piri. Definitely worth a visit.
0: Asian Achievers Awards. Friday, September 18th at London Hilton Park Lane. Exclusive radio partner, Leica Radio Greater London.
5: Bollywood's biggest 90s songs, non-stop.

0: Good Track was brought to you by LaikaRadio.com. We're live across Greater Manchester and online via the Laika Radio app and website on LaikaRadio.com. Listen live or listen back.
1: This is Laika Radio.
2: We hit Laika Radio.
3: चलिए मिलाने के घड़ियां देखते हैं टाइम कितना हुआ है. सो इट्स नियरली 7:33. इट्स 33 minutes past 7. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. लता मंगेशकर एंड किशोर कुमार की आवाज में दाग फिल्म से सुनाया आप सभी को अब चाहे मार उठे या बाबा यार मैंने तो हाँ कर दी है ना. तो जैसे पराठों पे सब हाँ किए जा रहे हैं जिन्होंने अभी अभी ट्यून किया. अभी मेरा आज का सवाल क्या है, आज का सवाल ये है कि क्या आप हमारा जो टिपिकल एशियन होता है ना भरपूर तगड़े बिल्कुल तगड़ा जो नाश्ता होता है हमारे यहाँ पे एशियन कंट्रीज में, आप वो पसंद करते हैं या फिर सीरियल्स. नो आई इट हेल्दी ब्रेकफास्ट ऐसा कुछ है. राइट, सो अब टाइम हो जाता है लाइफ थियरी का. आज कौन सी लाइफ थियरी सुनाई गई अश्विनी? द ग्रुप फोटो थियरी. हम सभी जब भी कहीं बाहर किसी ग्रुप के साथ में जाते हैं तो ग्रुप फोटोज हो ही जाती है ना, क्योंकि फोटोज हमारी लाइफ का बहुत अहम हिस्सा है. यादगार पल होते हैं वो सभी जो हम फोटोज में देखते हैं. और जैसे ही फोटो हमारे पास में आती है, ग्रुप फोटोज आती हैं, तो लोग फटाफट क्या करते हैं, खुद की तस्वीर को पहले जूम करके देखते हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ, कैसा लग रहा हूँ. एंड अगर खुद की तस्वीर अच्छी ना लगे तो फटाफट इंसान कहता है नहीं नहीं नहीं मेरी फोटो अच्छी नहीं आई, चलो चलो वापिस मतलब दूसरी फोटो बताओ, दूसरी फोटो लेते हैं, ये फोटो मुझे अच्छी नहीं लगी. अब उस ग्रुप फोटो में हो सकता है कि बाकी के जो 8 से 10 लोग हैं वो बड़े खूबसूरत दिख रहे हैं, लेकिन जो बंदा या जो बंदी अपनी पिक्चर को देख के बड़ी पजेसिव हो रखी कि भाई मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, मेरी तो नाक ऐसी दिख रही, मेरे तो आंखें ऐसी दिख रही, बस वहीं पे उनकी गाड़ी अटकी होती है. उन्हें लगता है न जाने लोग मुझे इस फोटो में देख के क्या कहेंगे. तो आ जाए अब मेन टॉपिक पे, हमारी लाइफ से ये थियोरी कैसे कनेक्टेड है. देखिए हम सभी को लगता है कि दुनिया जहां जो है ना वो सिर्फ हमें देखने के लिए बैठी है, उन्हें कोई काम काज है नहीं, हमारी लाइफ पे पूरा फोकस है उनका, हम कैसे उठते हैं बैठते हैं चलते हैं खाते हैं पीते हैं. लेकिन एक राज की बात बताऊं, आप इतने इम्पोर्टेंट नहीं है उनके लिए, वो खुद में ही मसरूफ है, खुद के लिए जी रहे हैं, खुद मदमस्त है. आपको तो मतलब ऐसे ही कभी बोल देते होंगे. एक्चुअली आप अपने घर में से ही शुरू कर सकते हैं, अपने घर के फैमिली मेंबर्स को देखिए, वो खुद में ही बड़े मदमस्त होते हैं, है ना, बाहर की दुनिया की क्या बात करें. धीरे धीरे चीजें चेंज हो गई है, जमाना चेंज हो गया है एंड पीपल आर गेटिंग मोर फोकस्ड इंटरेस्टेड टूवर्ड्स देमसेल्व्स रादर देन केयरिंग फॉर अदर्स. ये चीज पहले भी थी, अब ज्यादा लोगों के समझ में आ रही है. तो चार लोग क्या कहेंगे अगर मैंने ऐसे कर दिया तो, ये जो सोचने वाले लोग हैं ना, एक तो पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आपने ये लाइफ थियरी अभी देखी है पढ़ी है सुनी है तो, क्योंकि nobody cares, right? So आप अपनी जिंदगी अपने मन के मुताबिक जी सकते हैं, क्योंकि क्या सही क्या गलत ये किसने डिसाइड किया? आज मेरे लिए जो मुझे 9 दिखता है और आप अगर मेरे अपोजिट बैठे हैं तो शायद आपको 6 दिखेगा. सो 6 और 9 वाली थियरी बड़ी जबरदस्त है, इसके बारे में भी कभी और बात करेंगे. लेकिन आज की द ग्रुप फोटो थियरी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा.
2: द इवनिंग शो विद अश्विन.

0: Hey, this is Rizkhan and I'm taking you home on Drive. Weekdays 4 till 7 p.m. at Leica Radio Greater Manchester.
1: Get all the latest travel updates for Manchester at Breakfast and Drive. This is Ash Whitty on Leica Radio.
2: After the smash hit run in 2025, Surrenderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bungalow and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic panto tale on its head and give it an exciting dizzy twist. Touring to the Palace Theatre Manchester, Friday the 4th of September to Saturday the 5th of September. Click RifkoTheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight. Come join Surrenderella this summer as she goes back into the Bollywoods. Surrenderella, panto fun for all the family.
3: Radio partner Leica Radio.
4: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574 8410, दैट्स 8574 8410। साफो ट्रेवल। I told

0: Perry Perry is turning up the heat in Bolton with grills fired up and ready to serve you flame grilled Perry Perry favourites. Derby Street in Bolton, Pepe's Perry Perry. Definitely worth a visit.
1: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
2: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
1: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
2: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
1: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
2: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.

0: where Bollywood comes first.
1: Welcome, this is the second hour of the evening show with Ashwini. कैसा लगा हमारा अंदाज और आगाज इस सेकेंड आवर का? तो पहला गीत हमने आपको सुनाया, वन ऑफ माय फेवरेट्स, कुमार सानू की आवाज में, लता मंगेशकर की आवाज में, जब प्यार किसी से होता है मधुश दिल की धड़कन। दूसरा अगेन मेरा फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम लव स्टोरी, लता मंगेशकर एंड अमित कुमार की आवाज में, देखो मैंने देखा एक सपना। तीसरा मेरा फेवरेट। अच्छा, अब तक आप कुल मिला के समझ गए होंगे कि पूरी प्लेलिस्ट जो आती है वो मेरी फेवरेट होती है। ऑब्वियसली मैं सारे एराज के ध्यान रखती हूँ कि 60s वाले बच्चे खुश हो जाए, 70s वाले खुश हो जाए, 80s वाले खुश हो जाए, 90s वाले खुश हो जाए। मजा आ गया। चलिए अब इस मजे को लेके चलते हैं आगे। घर घर की कहानी में आज होता है, मंडे होता है इंडियन पेरेंट्स, एशियन पेरेंट्स, चलिए एशियन पेरेंट्स। तो एशियन पेरेंट्स हम जो है ना, एक तो हम लोग ना रिलेटिव्स और पूरा जमावड़ा जो हमारा होता है, जो परिवार, जो कुनबा होता है, हम लोग सबसे कनेक्टेड होते हैं। और जब हमारे पेरेंट्स बैक इन एशियन कंट्रीज जो हैं, और जब वो किसी के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो आपको वो इन्फॉर्मेशन स्लैश गॉसिप स्लैश जाने दो यार, अब ये लगा लो आप लोग अंदाज क्या क्या, तो वो सुनने में कितना मजा आता है। क्या आप भी मेरे तरह चटखारे ले लेके सुनते कि अच्छा और क्या हुआ, हाँ उसने ऐसा कर दिया, बिकॉज आई टॉक द सेम वे विद माय पापा जब वो कोई गॉसिप सुनाते तो। ओके एक मिनट बिफोर ये कि सिर्फ औरतें गॉसिप करती है, ना ना ना, अकॉर्डिंग टू रिसर्च मेन तगड़ी वाली गॉसिप करते हैं, ठीक है। सो जब आप अपने पेरेंट्स को फोन करते हैं बैक इन एशियन कंट्रीज और वो जो गॉसिप सुनाते हैं, तो क्या आप उन्हें लाइफ लेसंस देना शुरू करते हैं या सच में बताना कि चटकारे ले लेके वो गॉसिप सुनते हो? सवाल आया आपकी तरफ, जवाब आएगा अब मेरी तरफ, आपकी तरफ से।
0: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 129 इंडियन रुपीस एंड 30 पैसे। डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और SBI मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। T's and C's apply.

0: जी आप सभी को मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में अदालत फिल्म से सुनाया ये गीत। मेरा जो सवाल है घर घर की कहानी में, उसमें क्या मजेदार आंसर्स आ रहे हैं। ओ माय गॉड, यू नो, मतलब देखो आप और हम कितने सही मिले हैं, है ना, कि बिल्कुल हम, हमारी जो यहाँ पे शेयरिंग चलती है, जो सवाल जवाब चलते हैं और उसके बाद में उस पर हम लोग जो डिस्कशन करते हैं, भाई मजा आ जाता है ना। सो बिल्कुल हमारे पेरेंट्स की तरफ से बैक इन एशियन कंट्री जब वो हैं, और जब किसी काका मामा चाचा चाची ताऊ ताई जी, है ना, बुआ जी, उनके घर उनके बच्चों के बारे में जब इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो सुनने में कितना मजा आता है। तो बिल्कुल उस पर सब लोग अपनी अपनी कहानियां लिख रहे हैं, घर घर की कहानी वो सब चल रहा है यहाँ पे। आप सभी का एक्सपीरियंस आप लोग शेयर कर रहे हैं। किसी ने कहा कि क्या बात है यार, बड़ा मजा आ जाता है ऐसी ऐसी चटपटी बातों पे, एंड साथ में बड़ी हल्की फुल्की बातें हैं, हंस लेते हैं। बिल्कुल जी, इस शो का उद्देश्य यही है कि आप लोग मुस्कुराएं, है ना। दिन भर थक गए, पूरा दिन कैसे निकलना, जाने कितनी सारी बातें हुई होंगी, क्योंकि सुबह जैसे आपने शुरू की थी वो शाम तक तो हर इंसान बदल जाता है, है ना, और हम बदलते हैं। चेंज इज कॉन्स्टेंट हम सबकी लाइफ में, और वो चेंज कैसे कैसे आ जाता है देखो। तो मैं और मेरी फ्रेंड कल बात कर रहे थे, और ऐसी तरह फिलोसॉफिकल मूड में जब हम आ जाते हैं तो ऐसे ना, मतलब बड़ी बड़ी बातें होती, तो वो खुद ही कहती कि देख ना कैसे वक्त इंसान को बदल देते हैं। और मैं सिर्फ सुन रही हूँ, और फिर दूसरा सेंटेंस आता है मेरी फ्रेंड की तरफ से, एक्चुअली इंसान ने वक्त को बदलना चाहिए। तो मैंने कहा कि बिल्कुल, आपको मेरी दूसरे हाथ की तरफ से 3 बार सलाम। आई थिंक फ्रेंड्स के साथ में ये मस्ती हो जाती है ना, कि हम सभी जब बड़ी बड़ी बातें करते हैं और वड़ा पाव खाते हैं तो कुछ ना कुछ एक दूसरे को बोलते जरूर हैं।
1: Get all the latest travel updates for Manchester at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. This is Ash Whitty on Leica Radio.
2: Leica Radio.
3: Apno, okay.
4: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड, और उत्सव भारत है स्टार भारत।
5: Celebrate 30 years of East is East as Ayub Khan Din's iconic story returns to its northern roots at the Octagon Theatre in Bolton.
6: Don't miss Bhaskar Patel leading a stellar cast in this hilarious and heartfelt comedy about the Khan family. Set in Salford back in 1971, follow husband George and his wife Ella and their 7 children as they navigate life between two cultures.
5: See East is East from Friday 4th September to Saturday 3rd of October. Book now at octagonbolton.co.uk.
6: Imagine turning your next cake box order into a magical family adventure. This August, every online cake box order is automatically entered into our prize draw to win a family trip for 4 people to Disneyland Paris. So celebrate birthdays, special moments and summer memories with Cake Box. And you could be celebrating in Disneyland too. Order online this August at cakebox.com. Cake Box. Celebrate today and make memories forever. T&Cs apply.
7: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
8: Khakra Crunch Bhakri Munch, Chikki Sweet, Papad Beet, Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka Vibe Check.
9: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, Namkeen, Papad, Pickles, Chikki, Pot Meals and much more.
8: Jaimin Foods, Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
5: Bring your vision to reality with ImagineX Global. Our team of Imagineers create immersive experiences from digital content to epic live events. Whether it's a high-energy concert, an innovative conference, sleek brand visuals, or stunning photography and videography, for your special moments, we have you covered. We're a tech-driven, human-led creative experience company delivering cutting-edge digital solutions and expert event management. Let's turn your ideas into epic memories. Contact us today at imaginexglobal.com or WhatsApp 0758 580 1801, and let your ideas take center stage. ImagineX Global, where creativity, technology, and humanity unite the world.
1: Get in touch. Advertise on Leica Radio, Greater Manchester, the largest Asian commercial radio station in the northwest of England. Call now 0161 250 8222 or sales at leicaradio.com. Leica Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa, and LeicaGold.com.
10: This is Leica Radio,
1: Greater Manchester. Feel Good Track is brought to you by the Leica Radio mobile app. Download it from iOS and Android devices.
10: This is Leica Radio,
1: Greater Manchester.
10: Leica Radio.
11: Emotion of the day.

0: Emotion of the day.
1: Emotion of the day.
2: Feel Good Track was brought to you by LycaRadio.com. We're live across Greater Manchester and online via the Lycar Radio app and website on LycaRadio.com. Listen live or listen back.
3: This is Lycar Radio.
4: तो भाई बहुत सारे गॉसिपर्स मुझे अपने बारे में बता रहे हैं कि वो भी कितना एंजॉय करते हैं गॉसिप व्हेन इट कम्स विद देयर पेरेंट्स. ओके, बाकी तो चलो छोड़ो. अच्छा, तो मैंने आज एक इतनी अजब और गजब रील देखी है. अजब एंड गजब रील देखी है मैंने, अजब गजब रील. उसमें एक मेंस पार्लर में, ओके, और ये कहीं एशियन कंट्री में था, तो वो जो भैया थे जिनका वो पार्लर था और जो भैया अपना फेशियल कराने गए थे, वो तो जिनका पार्लर था, उन भैया ने दो पेस्ट ली, लाल कलर की सफेद कलर की, वो लगाई ये जो भाई साहब अपना फेशियल करने आए थे. और उसके बाद में थोड़ा सा लिया इनो, वो उनके चेहरे पे छिड़का. उसके बाद में लिया गुलाब जल, और जो मतलब इनका चेहरा रगड़ा है एंड एक्चुअली उनका फेस ब्राइट हो गया. ओके, मैं कुछ भी एक्स्ट्रा क्रिएट करके नहीं बोल रही हूँ, ये जो मैंने रील देखी आई वॉज लाइक ओ माई गॉड. तो बाकी फेशियल वाले जो ब्रांड्स होंगे बड़े बड़े ही, अब वो क्या करें भाई. अगर आपको ये रील देखने मिले तो प्लीज सोशल मीडिया पे देखिएगा, क्योंकि मैं ये देख के अकेली इतनी हंस पड़ी ट्रेन में. एंड आई वॉज लाइक देन एकदम याद आया कि ओ यार मैं तो ट्रेन में थी, है ना. तो टूथपेस्ट से फेशियल होगा यार, कुछ तो होगा पक्का, वर्क होता है ना. ऐसे हो जाते हैं ना कुछ इतनी फनी सीरियल्स हम देखते हैं कि अकेले हंस हंस के लोटपोट हो जाते हैं. ओके, इमोशन ऑफ द डे में आप सभी को सुनाया मोटिवेशनल मंडे के लिए बड़े दिल वाला इस फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में जीवन के दिन. व्हाट अ लवली ट्रैक दैट इज, है ना. जब भी कभी ऐसे डाउन फील होता है ना, मूड अच्छा नहीं लग रहा, तो ऐसे कुछ जिंदगी से रिलेटेड अच्छे और प्यारे गीत सुनने चाहिए. नो दुखी सॉन्ग्स, क्योंकि वो पता चला आपको और दुखी कर रहे हैं. थोड़े हैप्पी और अच्छे सॉन्ग सुनने चाहिए, उससे हमारा मूड भी अपलिफ्ट होता है. नेक्स्ट ट्रैक यू ऑल विल से आहा वाह एंड उफ.
2: Lycar Radio. It's summer on the Lycar Radio Network. This is Lycar Radio.
5: Hi, मैं हूँ रुबीना खान. सुनिए मुझे Lycar Radio Greater Manchester में दोपहर 1 से 4 बजे तक The Magazine Show में.

0: Extra podcast update.
1: एपिसोड नंबर 29 आ चुका है. इज गोल्ड रियली द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, होस्टेड बाय रवि शर्मा जी. डू द न्यू जनरेशन ऑफ साउथ एशियन स्टिल कंसिडर गोल्ड एज अ वैल्यूएबल एसेट. बहुत सारी चीजों पे बात हुई है, गपशप हुई है, इंटरेक्शन हुआ है. लाइक एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, एमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स.
0: लाइक एक्स्ट्रा इज हियर. दिस इज अश्विनी ऑन लाइक रेडियो.
2: It's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055, we could be short by 5 billion litres a day.
3: Hold on, miss. 2055? We'll be grown-ups by then.
4: We're not having that, are we?
3: No. Oi, Gila, eat water and cannons.
5: And fix those drips and drops.
6: And take shorter showers, yeah?
7: Because when we work together, it all adds up.
8: So come on, you lot. Search Let's Save Water.
9: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410. दैट्स 8574-8410. साफो ट्रेवल.
10: At all protected.
11: The South Asian Film Festival UK brings to the big screen Raj Kapoor's Sangam in stunning 4K on the 4th of October. Celebrate 50 years of Yash Chopra's Kabhi Kabhi on the 11th of October and marking its 25th anniversary, Dil Chahata Hai on the 18th of October. And before every screening, a filmy sing-along medley celebrating the greatest songs and stars. Supported by BFI National Lottery Funding, official radio partner Leica Radio. Book now at showcasecinemas.co.uk/SAFUK or visit safuk.com.
12: Pepe's Piri Piri is turning up the heat in Bolton, with grills fired up and ready to serve you flame-grilled Piri Piri favourites. Derby Street in Bolton. Pepe's Piri Piri. Definitely worth a visit.

0: ये है लाइका रेडियो। Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: एक पाउंड के बदले आपको मिल सकते हैं 129.57 इंडियन रुपी, 375.91 पाकिस्तानी रुपी, 449.57 श्रीलंकन रुपी, 166.15 बांग्लादेशी टाका, 88.88 अफगान अफगानी, 1.35 यूएस डॉलर्स, 175.3 केनियन शिलिंग, 63.56 मॉरिशियन रुपी।
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. LIKA Radio. The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
1: Gold is currently trading at £104.88 per gram.
0: Gold rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.
1: Leica Radio. क्या बात है, कितने बढ़िया ट्रैक्स लगते हैं जब मोहम्मद रफी की आवाज में तीसरी मंजिल से हमने सुना तुमने मुझे देखा, आराम से है ना, मतलब थोड़ा सा ठहराव वाला ये गीत लगता है मुझे। एंड जैसे जैसे शाम बढ़ते जाती तो पूरी कोशिश होती है कि आप लोग एंजॉय कर सके, ऐसे गीत मैं लाइन अप करूं। लास्ट ट्रैक ऑफ दिस आवर मन्नारे की आवाज में नूरी फिल्म से लागा चुनरी में दाग, दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक्स व्हेन इट कम्स टू मन्नारे की वॉइस में। एंड सेकेंड आवर अब खत्म हो रहा है, हम सभी ने बड़ी हल्की फुल्की बातें अभी इस समय की हैं, खाने पीने की बातें हुई, गॉसिप्स की बातें हुई हैं, पेरेंट्स से रिलेटेड सवाल यहाँ पे बातचीत हुई है, अच्छे अच्छे गाने चल रहे हैं, 8:49 हो रहे हैं ये भी पता चल गया है, द इवनिंग शो भी अश्विनी चल रहा है, ओए होए क्या बात है, अच्छा ऐसा है। सो थर्ड आवर में हम लोग क्या करेंगे भाई, बहुत सारी बातें उस आवर में भी होती है, लेकिन फिलहाल ये जो आवर है यहाँ पे, ये जो न्यू सेगमेंट है घर घर की कहानी को, आप सबने बहुत पसंद किया है, आप सबके मैसेजेस आते रहते हैं, उसे हमें पता चलता है कि आप लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं ये शो। एंड सबसे मेन, बारिश आने वाली है इसलिए कितने खुश हैं हमारे लिसनर्स, जी हाँ फाइनली अब विंटर्स हो रहे हैं टाटा बाबा, बिकॉज मिड ऑगस्ट आ गया है ना।
0: Listen to Leica Radio Greater Manchester on LeicaRadio.com and Leica Radio mobile app. This is Ashwini on Leica Radio. Leica
2: Radio. आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
3: कडल से लेकर हॉस्पिटल तक, स्कूल रन से लेकर एम्बुलेंस की सायरन तक, बेबीज, छोटे बच्चे और टीन्स में मीजल्स, मेनिंजाइटिस और न्यूमोनिया जैसी बीमारियां बहुत सीरियस हो सकती हैं और जान को खतरा हो सकता है। अपने बच्चे को वैक्सीन लगवाना उन्हें सेहतमंद और महफूज रखने का सेफ तरीका है। बच्चों के लिए NHS वैक्सीन अवेलेबल है, NHS GM चाइल्ड वैक्स सर्च करें या अपने GP प्रैक्टिस से राब्ता करें।
4: Location, location, location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
4: high appreciation
5: in Dubai.
6: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
7: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai. Southall Travel.
8: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
9: Southall Travel can take you there. Southall Travel, at all protected.
10: Punjab, the biggest tunes.

0: Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: एक पाउंड के बदले आपको मिलेगा 129 इंडियन रुपी एंड 30 पैसे. एंड डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और एसबीआई योनो मोबाइल ऐप. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स. विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच. टीज एंड सीज अप्लाई.
1: चलिए मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है. 9:19 17 अगस्त मंडे और आज मनाई जाती है नाग पंचमी भारत में. सो कई लोगों ने फास्ट भी किया है क्योंकि श्रावण सोमवार हुआ है. तो श्रावण सोमवार की शुभकामनाएं तो आपको सुबह से मिल रही होगी, हमारी तरफ से भी ढेरों शुभकामनाएं. एंड जब सावन का महीना होता है तो कहते हैं कि बड़ा पायस्ट महीना होता है, तो अच्छे कर्म करते रहना चाहिए. इस बारे में बहुत से किस्से, कहानियां एंड थियोरीज आपने भी सुनी होगी. भाई शाम के शो में आप कोई ना कोई लाइफ थियोरी सुनते हैं, तो आज मैंने आपको सुनाई थी ग्रुप फोटो थियोरी, बड़ी अच्छी लगी आप सबको. वो अपलोड हो चुकी है ऑन माई इंस्टाग्राम, दैट इज रेडियो वाली अश्विनी. अगर मिस हो गई है तो जरूर वहां देख सकते हैं. एंड आज और भी कुछ मनाया जाता है, आज मनाया जाता है नेशनल थ्रिफ्ट शॉप डे, नेशनल ब्लैक कैट एप्रिसिएशन डे, नेशनल नॉन प्रॉफिट डे, बेबी बूमर्स रिकग्निशन डे, नेशनल वेनिला कस्टर्ड डे, नेशनल आई लव माई फीट डे एंड नाग पंचमी. इतने सारे डेज. अच्छा, इन सब का तात्पर्य क्या होता है कि हमारी जिंदगी में छोटी छोटी चीजें होती हैं, उनकी तरफ हम ध्यान देते नहीं हैं. और जब ऐसे कोई डेज आते हैं जैसे मदर्स डे, फादर्स डे, वैलेंटाइंस डे, बच्चे डे, बेस्ट फ्रेंड डे, मम्मी पापा डे, सारे जो डेज हैं, वो कहीं ना कहीं किसी के लिए आप हमारी जिंदगी में कितने महत्वपूर्ण हैं. आई लव माई हिंदी, एक तो बड़ी शुद्ध हिंदी आती है ना कभी कभी. सो ऐसे हो जाता है कि यू नो ये डेज मनाए जाते हैं और वो रिमाइंडर्स हमें उन इंसानों को या उन चीजों को सेलिब्रेट करने में मदद करते हैं. तो चलिए अब चलेंगे आगे. एंड आर्टिस्ट ऑफ द वीक में साहिर लुधियानवी जी हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक हैं. उन्हीं की फिल्म हमराज से सुना रही हूँ आपको अगला गीत महेंद्र कपूर की आवाज में.
0: Get all the latest travel updates for Manchester at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. This is Ash Winnie on Leica Radio.
2: Leica Radio.
3: अपनो करीब. आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
4: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, लागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाएं. फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
5: आफ्टर द स्मैश हिट रन इन 2025, Surinderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bhangra and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic Panto tale on its head and give it an exciting ditzy twist. Touring to the Palace Theatre.

0: चलिए मिला लेंगे घड़ियां, एक बार देखते हैं टाइम कितना है, 9:30। गजल या कव्वाली मैं क्या सुनाने वाली। तो आज मंडे है, आज आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ कव्वाली। कव्वाली बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जमाने को दिखाना है। तो शैलेंद्र सिंह एंड आशा भोसले की आवाज में, लेकिन अभी नहीं, कुछ देर बाद ये कव्वाली आप लोगों को सुनाएंगे। उसके पहले जरा आपको सुना दे किशोर कुमार एंड लता मंगेशकर की आवाज में थोड़ी सी बेवफाई, इस फिल्म से एक बड़ा ही मेलोडियस ट्रैक।
1: ये है लाइका रेडियो।
2: मैं हूँ इब्ने ताबिश और मेरा आपका साथ रहता है रोजाना मिड मॉर्निंग शो में लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर से सुबह 10 बजे से 1 बजे दोपहर तक।
1: दिस इज अश्विनी ऑन लाइका रेडियो।

0: Good Track was brought to you by LaikaRadio.com. We're live across Greater Manchester and online via the Laika Radio app and website on LaikaRadio.com. Listen live or listen back.
1: This is Laika Radio.
0: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
2: एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 129.162 इंडियन रुपी, 375.91 पाकिस्तानी रुपी, 449.54 श्रीलंकन रुपी, 166.18 बांग्लादेशी टका, 89.15 अफगान अफगानी, 1.35 यूएस डॉलर्स, 175.24 केनियन शिलिंग, 63.55 मॉरिशियन रुपी.
1: Laika Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Laika. Download LemFi now. T's and C's apply. L-Y-C-A. This is Laika. The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Laika Radio.
2: Gold is currently trading at £104.88 per gram.
0: Gold rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.
2: Laika. चलिए मिला लेंगे घड़ियां, एक बार देखते हैं टाइम कितना हुआ है. इट्स 40 मिनट्स पास्ट 9. आप सभी ने ट्यूनिंग किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. मोटिवेशनल मंडे हमने बनाया, तीन अमेजिंग फीचर्स, घर घर की कहानी, बड़े हंस हंस के आप सबके मैसेजेस आते हैं, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं आप लोगों सेक्शन. ओके जी, सो गोल्ड नाइट्स हमारी ओवरनाइट सर्विसेज, जरूर सुनिएगा लाइका रेडियो 90s, लाइका रेडियो पंजाबी, लाइका गोल्ड 2, इतने सारे चैनल्स हैं आप सबके लिए सुनने के लिए. एंड जो दो ट्रैक मैं आपको सुनाने वाली हूँ जाते जाते, पहला इज मोहम्मद रफी की आवाज में सावन बहादुर से कान में झुमका चाल में ठुमका, दैट विल बी द फर्स्ट ट्रैक. एंड गजल या कव्वाली में क्या सुनाने वाली, यस मैं सुना रही हूँ आप सभी को कव्वाली. सो जमाने को दिखाना है, बड़ी अच्छी और बड़ी प्यारी गजल, जरूर गजल नहीं भाई कव्वाली है. कल आप और हम साथ में मनाएंगे टेरिफिक ट्यूसडे, सप्ताह का दूसरा दिन है. एंड ट्यूसडे दोपहर के बाद में समय जो स्पीड में निकलता है ना, फिर जाके सीधे फ्राइडे में रुकता है, ये ऐसा मेरा मानना है. मुझे लगता है कि ट्यूसडे आफ्टरनून के बाद में ना समय बहुत स्पीड में निकल जाता है. क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है? ना ना अभी नहीं, कल इस विषय पे हम लोग बात करेंगे, क्योंकि कल और भी बहुत सारी चीजें होंगी, बड़े ही मेलोडियस ट्रैक होंगे आप सभी के लिए. आप लोगों के फीडबैक, आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के मैसेजेस हमें समझने में मदद करते हैं कि कहाँ पे क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए. आप लोगों की पसंद नापसंद सब पता चलती, तो इन सब चीजों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. प्यार बड़ी अच्छी चीज है, तो प्यार दो प्यार लो, पावर तो किसी को बर्बाद करने के लिए चाहिए. एंड लाइफ इज ब्यूटीफुल, तो उसको प्लीज कॉम्प्लिकेटेड ना करो. लव यू ऑल, टेक केयर, क्लियर आई से बाय बाय.
1: Laika Radio.
3: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

दीवानी मस्तानी ओ जानी जरा नजरे मिला ले समझी अरमानों के खुले दरीचे आ जा जरा सिमट के हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे पचासी झटके हट तेरा रंग

कहूँ मैं खरे खरे, जाती है क्यों परे परे, तेरी जिंदगी में आ जा प्यार को बता दूँ मैं। पास अगर तू आ जाए, सांस सांस टकरा जाए।

वहीं पे मेले लग जाए तू देखे जहाँ पलट के हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे पचासी झटके हट तेरा रंग है।

0: Pure Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
1: सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच या शाम का डिनर, सब कुछ एक ही जगह. बल्कि नाश्ता अवेलेबल ऑल डे. तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट्स में एंजॉय करिए हलवा पूरी, पाए, निहारी, मगज, पराठे और बिरयानी. साथ ही लजीज डिजर्ट्स, फालूदा शेक्स, कड़क चाय, कॉफी और ठंडी लस्सी का मजा लें. ग्रैंड ओपनिंग ऑन जुलाई 11th. आज ही तशरीफ लाइए. 881 स्टॉकपोर्ट रोड, मैनचेस्टर, M19 3PG. तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट, हर वक्त हर जायके के लिए.
2: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs.
3: Borderless World presents Atif Aslam live in concert.
2: Atif Aslam brings his unforgettable sound
3: on Friday, 11 September at the AO Arena, Manchester. Tickets are now available on Ticketmaster.
2: Zenby Productions, supported by Rianne's Music.
3: Official radio partner, Lyco Radio, Greater Manchester.

0: तो क्या तू फिर भी जान है मेरी।
1: The sounds of love in Manchester. Like a radio.